0: listening to
1: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ़ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
9: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
9: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काकी की दुकान
9: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
9: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑक लेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
10: सोफी ज्वेलर्स
11: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ओक लेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
12: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के
12: सेफवे राइडर कॉल टुडे एट 01274201679 और विजिट safewayrider.co.uk सेफवे राइडर हेल्पिंग यू सिक्योर योर फ्यूचर
13: सुनिए जैसा भाभी ने का...

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी मेनी स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM. You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477277। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
9: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
9: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
9: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काकी की दुकान
9: खालिस सौदे की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
9: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95BR 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
10: सोफी ज्वेलर्स
11: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
12: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
13: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
12: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
13: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
12: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
13: 33 Wetland Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679
12: UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
13: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99
12: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
14: सोने दे गजरे ते सोने दिया चूड़ियां सोने दे गजरे
12: से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कुबर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: Center. Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lemba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए।
0: रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM।

0: Threshold Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवत लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स
10: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
10: सोफी ज्वेलर्स
11: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
12: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
14: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
13: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी जा रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी जा रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड

0: सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
1: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
2: ओपन 7 days, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेंस बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
1: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
3: You're listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM. You're listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.

البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض

0: Old Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी। योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं नो त्रिजी अकाउंटेंट्स। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम मैं नो त्रिजी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं नो त्रिजी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, मैं नो त्रिजी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड 424453। मैं नो त्रिजी।
13: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज़ रोज़ा कुर्बानी हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: कितने पुर नूर हसी है बखुदा आज की रात कितने पुर नूर हसी है बखुदा आज की रात जर्रे जर्रे की निराली है अदा आज की रात राज की बातों के बातों के लायक न थी कासिद की जबान इसलिए खुद ही कहा जो भी कहा आज की रात इसलिए खुद ही कहा जो भी कहा आज की रात जब उन्हें सिदरा से जाते हुए तन्हा पाया ये एक नई नात के चंद अशआर है और शार ने हुजूर के मेराज बयान की कहता है कि जब उन्हें

जब उन्हें सिदरा से जाते हुए तन्हा पाया, जब उन्हें

0: ये थे चंद्रशाल, जो कि आप हजरात ने चंद्रशाह के जो आप हजरात ने गवारा कर लिए, अब फरमाइश पे मैं नाथ पढ़ रहा हूँ शायर ने। ओ शायर,
1: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियां और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
9: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
9: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
9: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
9: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
10: सोफी ज्वेलर्स
11: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
12: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
12: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
12: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetland Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679
12: UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
12: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260 078

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: Adam Padam Te Khuda Ki Madad
4: on 1413 AM.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी। योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट की स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आपने बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
12: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
12: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف

0: Revolution Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
9: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
9: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
9: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
9: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफट लेन ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
10: सोफी ज्वेलर्स
11: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
12: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
13: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी न्यू स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM. You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
0: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड टाइप, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रोन्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: You're listening to
0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: واتقوا ذي المرحمة أولئك أصحاب
1: You're listening to Redfold Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
7: उफ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियां और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
8: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 फुट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
8: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
13: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
13: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
8: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
13: UK सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
13: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
0: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
0: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Beautiful Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स
6: और इसके साथ साथ खूब

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियां और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर 1 चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
9: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
9: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
9: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
9: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स
11: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
14: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
15: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
14: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Trent Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Good Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lemba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीस कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड लाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रोन्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो।
12: You're listening to Bradford Asian Radio,
13: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
5: उफ इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियां और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
8: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 124 लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
12: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
12: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
12: 33 वेटल लेन ब्रेडफोर्ड
11: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
12: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर।
5: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी। योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lemba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड टाइप, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
9: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

0: Beautiful Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane, Bradford BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ओकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
14: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
13: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेंस बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास्ती कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेड फाउंडेशन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालिस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्रे खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: episode. Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी। योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं नोटरीज दी अकाउंटेंट्स। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम। मैं नोटरीज दी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं नोटरीज दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, मैं नोटरीज दी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453। मैं नोटरीज दी।
0: You're listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.

जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदेद जी। कैसे हैं आप सब मौजूद सामईन इकराम? ब्रॉडफोर्ड एशियन रेडियो 14:13 AM पर आशा अख्तर सुबह 9 के प्रोग्राम के साथ आपके साथ आज एक दिलचस्प और खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आई है। हमारे साथ रहिएगा जी। आज का प्रोग्राम जो है वो रंग बिरंगी तितलियों के सफर से लेकर सुहानी बहुत ही खूबसूरत सी जगह है हमारे पास हॉलीडेज के लिए, और क्यों ना हो भाई, मौसम खूबसूरत हो तो हर चीज जो है ना वो अच्छी लगती है। अभी इस पर भी बात होती है। इससे पहले हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk पर जाकर अब हम क्या कुछ करते हैं इस रेडियो पर आपके लिए खूबसूरत तफरीह तबा के प्रोग्राम से लेकर और ढेरों ढेर हमारी जो दिन भर की और रात भर की काविशें चलती हैं वो आप चेक कर सकते हैं जी bradfordasianradio.co.uk पर जी, हमारी वेबसाइट पर। और हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। लाइंस आर ओपन्ड नाउ, सो यू कैन जॉइन अस एट एनी टाइम जी। बिल्कुल आप भी जंप इन करें हमारे प्रोग्राम में, हमें बताएं आपकी क्या खूबसूरत सी फरमाइश है, हम पूरी करेंगे। और जहां कहीं भी है बहुत खुश रहें, बहुत खुश उसलूबी से अपने काम भी साथ साथ अंजाम देते रहें, हमारा प्रोग्राम जो है इससे भी लुत्फंदोज होते रहें। हमेशा की तरह अशक्तर आखिर आपके लिए तफरीह तबा जो है बेहतरीन, खूबसूरत और म्यारी जो जिसे कहते हैं वो पहुंचाएगी। और इसके साथ साथ हमेशा की तरह बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही दिलकश प्रोग्राम जो है वो आपके लिए पेश किया जाएगा जी। बात हो रही थी मौसमों की और इंसान के मूड की, के मौसम जो है खूबसूरत हो, बाहर सुहाना उजली। आज वो इतनी मैंने बाहर नजर दौड़ाई है जी, इतनी वो उजली उजली धूप तो नहीं है, लेकिन अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र के मौसम जो है वो काबू में है। जिसे हम कहते हैं कि हमारी तबीयत के लिहाज से बर्दाश्त, बेरेबल जिसे कहते हैं ना, कि वो है कि हमारी तबीयत जो है वो इसको बर्दाश्त कर सके। मोतदिल मौसम है और बहुत ही सुहाना मौसम। सुहाने मौसम में बड़ी जी हॉलीडेज प्लान हो रही हैं डिफरेंट जगह। मैं अब आपको बताती हूँ जी, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि हम सबको खुश रखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हॉलीडेज प्लान नहीं कर सकते, कहीं कुछ बच्चों की मसरूफियात, कुछ घर में बहुत ज़्यादा ऐसी रौनकें भी कह लें, और फिर जिंदगी के साथ साथ काम, रोज़मर्रा रूटीन को चलाने के लिए बहुत से ऐसे मतलब फैमिलीज हैं कि वो प्रिफर करते हैं कि जी हम लोकली इंजॉय ज़रूर करें, जाएं और लोकल जो हमारे इतने खूबसूरत पार्क्स हैं। और बहुत आजकल तो जगह जगह झूले जो है बच्चों के लिए इंतज़ाम किया गया है, और मेला शेला ये जो है इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं और उसी पे इक्तफा कर लिया जाता है जी। और एक बात ज़रूर है जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बाहर का मौसम जितना भी खूबसूरत हो, दिल का मौसम जो है अगर खूबसूरत नहीं है ना, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। और जब दिल का मौसम खूबसूरत होता है तो बाहर वो तो खैर धुंध भी पड़ी हुई हो, कैसा भी मौसम हो, वाओ इंजॉय करते हैं। और लेकिन
ये यहाँ पे स्पेशली हमारे ब्रैडफोर्ड में तो ये है कि हर वक्त वो जिसे डार्की डेज मैं उन्हें बोलती थी, बहुत डार्क डार्क रहता है, और फिर उसमें जब एकदम से उजला निखरा वेदर आता है ना, यकीन करें कि वो ऐसे लगता है कि चाहे अंदर का मौसम उदास, बल्कि अंदर की उदासी को छट जाती है, अंदर की उदासी को छट जाने में बड़ा ही यूजफुल और हेल्पफुल वेदर होता है। सबकी डिफरेंट आरा हो सकती हैं इस बारे में, सबकी अपनी अपनी राय होती है। आप भी अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारी लाइन जो है नंबर स्टूडियो का 01274306677, इसके ऊपर हमें कॉल करके हमारे साथ प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करें, अपनी खूबसूरत सी आरा जो है उससे हमें ज़रूर आगाह करें। टॉपिक और मौसम और बहुत कुछ रंग रंगीनियाँ जो है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा चलती रहेंगी। आइए एक खूबसूरत सा ये नगमा जो है वो सुनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा।

जी सामईन इकराम, ब्रॉडफेडेशन रेडियो 1430 AM पर आयशा अख्तर के साथ आप आज बहुत ही खूबसूरत सुहाने ठंडे मीठे मौसम के नज़ारे करते हुए खूबसूरत सी मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यही मकसद भी होता है प्रोग्राम खूबसूरत बनाने का, अच्छा बनाने का, कि दिन भर की थकावट भी ना हो और बड़े पुरसकून माहौल में हम अपने जो डेली मैटर्स हैं, डेली रूटीन लाइफ है, उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है वो परफॉर्मेंस हमारी रहे दिन भर और मशक्क़त का एहसास ना हो। किसी भी शोबे से हम रिलेटेड हों, काम कर रहे हैं, कोई बहुत हार्ड वर्क है आपका और घरेलू कामकाज में ख्वातीन मसरूफ़ हैं, बच्चों के साथ टाइम है, हॉलीडेज हुई हुई हैं और उनसे पूछ के देखो जिनके छोटे छोटे बच्चों के साथ मगजमारी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप यकीन करें, आप हमारा प्रोग्राम जो है साथ साथ सुनेंगे ना, आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। एटलीस्ट ज़हनी जो जिसे कोफ्त कहते हैं ना, उससे हम आपको दूर रखेंगे बिल्कुल। हमारी वेबसाइट broadfederationradio.co.uk है जी, और हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं जी। घबराएं मत, आपके लिए बहुत से खूबसूरत से नगमात जो हैं वो सजा के रखे हुए हैं, ऑन होल्ड है। आप भी सुनना चाहते हैं कोई खूबसूरत सा गीत नगमा अपना फेवरेट, तो हम आपके लिए पेश कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखती हूँ और टॉप सीक्रेट भी होता है और ताकि प्रोग्राम के साथ आप जुड़े रहें, मुंतजिर रहें कि आज क्या सौगात आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। परेशान ना हो, बहुत खूबसूरत सौगात है और आप हमेशा की तरह महजूज होंगे हमारे अल्फाज से, जिसे लफाजी कहते हैं, खूबसूरत है। और वीमेन स्पेशली, ख़वातीन के लिए तो ढेरों ढेर इसमें हमने कोई चुटकले, कोई हमने इनके लिए, क्योंकि बच्चों के साथ ऑनेस्टली कैसा वक्त गुजरता है हॉलीडेज़ में, और फिर हॉलीडेज़ प्लान करना, घरदारी, सलीका तरीका, पूरे ख़ानदान की बातें, दिस एंड दैट। इस पर जाने से पहले आइए एक खूबसूरत सा नगमा सुन लेते ताकि तबीयत बहाल रहे और किसी किस्म की मुशक्कत तबीयत पर ग्रा न गुजरे। तो चले ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: जी बिल्कुल समय निक्राम, अब एक छोटी सी ब्रेक का टाइम होगा और ब्रेक के बाद ब्रॉडफॉर्डेशन रेडियो 1413 AM पर आप हमारा प्रोग्राम जो है वो मजीद समात फरमाएंगे। हमारी वेबसाइट broadfordationradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। बिल्कुल प्रोग्राम के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और कुछ लम्हों के बाद हमारी जो ब्रेक है, ब्रेक के बाद बहुत कुछ सस्पेंस जो है आपके लिए हमने इकट्ठा कर रखा है और कोशिश तो पूरी है कि आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी मौसीकी जो है वो आपकी नज़र की जाए ताकि आप इससे पूरी तरह महजूज हो सकें। जी बिल्कुल घड़ी की तरफ नज़र है और ब्रेक का इंतज़ार है और ब्रेक के बाद आपके साथ फिर हम प्रोग्राम का बकिया हिस्सा जो है वो पेश करते हैं। जी घड़ी जो है मुझे बहुत सा कुछ याद आ जाता है, बहुत सी बातें फुल जो वीकेंड पे लगी हुई होती हैं। आपके साथ एक आफ्टर वीक मुलाकात होती है तो फिर एक वीक के बाद जो है वो ब्रेक से रिलेटेड और बहुत कुछ चले मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।
1: ऑन 1413 AM
2: And the winner is
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफत लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
11: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
11: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
11: 33 वेटल लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
10: सेफ राइडर.co.uk।
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
11: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: to Julius, 93 Hodson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
4: This is Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
7: जी बिल्कुल मौजूद सामीन इकराम, ये ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM है जिस पर आप आशा अख्तर के संग मौसम का खूबसूरत जो है वो सफ़र तय कर रहे हैं। मौसम अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एक इनाम के स्पेशली हमारी तबीयत के जो है मुताबिक अगर हमें मौसम मिल जाए तो क्या ही कहने। और फिर इन खूबसूरत मौसमों में हमारी डेली रूटीन लाइफ जो है वो सारा कुछ मैटर्स जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। अभी टॉपिक की तरफ भी आते हैं, इससे पहले हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274-306-677। बिल्कुल टॉपिक देखे, बहुत कुछ होते हैं, किताबों से रिलेटेड होते हैं, कुछ हमारे पास इक्तबासात होते हैं, शायरी होती है, पोइट्री और गज़ल्स, कुछ और बहुत कुछ हमारे पास अक़वाले ज़रिए होते हैं, हिकमत, दानाई और ये शऊर व आगही की मंजिलें, ये सब कुछ होता है, बहुत कुछ है हमारे पास। उर्दू अदब है हमारे पास, इंग्लिश लिटरेचर है हमारे पास, बहुत कुछ करने को, पढ़ने को है। एक बात आज जो मैं खुद से आपके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ, बहुत से सवालात भी हैं जो आपसे भी पूछने हैं और जवाबात भी आपने देने हैं। और क्या कहूँ कि क्या ज़िंदगी का सफ़र थका देने वाला नहीं हो जाता कभी कभी। हम बड़ी जोश व खरोश के साथ अपने टारगेट्स जो है उनको अचीव करने में लगे हुए होते हैं, ज़िंदगी के भाग दौड़ में लगे हुए होते हैं। एक मरहले पे जाकर हमें ये एहसास होता है कि ये सारी स्ट्रगल अगर हम अपनी लाइफ के लिए कर रहे हैं, सिर्फ महज अपनी ज़ात को, तो क्या हम सेल्फिश नहीं हो जाएंगे। इस सेल्फिशनेस से बचने के लिए फिर हम कहते हैं कि हमारे से जुड़े जो बहुत करीबी रिश्ते हैं उनको हम देखते हैं, उनके लिए कुछ कर ले। बहुत करीबी रिश्तों में जो ओवरऑल भी मुझे व्यूज़, रिव्यूज़ और कुछ आरा मिलती हैं, गिले शिकवों से भरपूर होती हैं। और बहुत हद तक जहाँ पे अच्छी सिचुएशन है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है वहाँ पे, कैसा नहीं है आप भी देखें। जिनके लिए हम बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से वो रिश्ते हमसे रुख मोड़ने लगते हैं, मुख मोड़ने लगते हैं। फिर एहसास होता है, चाहे बहुत कुर्बानियां देते हैं, एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से वो रिश्ते हमसे रुख मोड़ने लगते हैं, मुख मोड़ने लगते हैं।

ख्याल रखना पड़ता है इन रिश्तों में। इस्लामिकली तो हमें इनके साथ अटैच रहने का और बर्दाश्त करने का हुक्म दिया गया है। कुरान खोल लें, अहदीस मुबारक का मताला करें, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। फिर हमारी माशरती रसूम इकदार को देखें, वो हमें और हमारे बड़े बुजुर्गों के आदात व अतवार, ये सब कुछ जो है एक फर्द वाहिद को इस दुनिया में जब एक बच्चा आंख खोलता है तो अलर्ट कर दिया जाता है कि ये सब सिचुएशंस को सामना करना पड़ता है। चलिए ये एक साइड पे रख देते हैं। अब जो मुद्दा है असल ख्वातीन के लिहाज से, जो मेरे साथ तो बहुत ज्यादा मैं फील करती हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर मौका के ऊपर हर जगह के ऊपर ख्याल अच्छा जा रहा है सारे मामलात, लेकिन खुद के ही अपने जब मैं अंबार कपड़ों का ढेर लगा हुआ अपने सामने देखती हूँ कि उसको डेली जो हमारे काम होते हैं ख्वातीन के यूके में स्पेशली, वो हमें खुद से करने पड़ते हैं भाई। कहीं से हम जैसे पाकिस्तान में कोई हेल्पर कोई अपनी, अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी किसी को ये नहीं समझा कि जी वो मुलाजमा का लफ्ज मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगता, मैं उसे हेल्पर कि हमारी हेल्प कर रही है, हम भी उनके साथ लग के और ज्यादा। और यहाँ पे भी मेरी वैसे भी आदत है, मुझे किसी का काम इतना पसंद नहीं आता है तो मैं कहती हूँ, वो फिर सारे घर वाले भी कहते हैं अगर तूने ऐसे ही करना तो फिर खुद कर ले, लेकिन इनकी छोटी सी हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। इनको मैं क्या किसी को अब कहूँ तो, लेकिन वो छोटी सी हेल्प भी देखिए यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, हर कोई बिजी, बच्चे और बच्चों को बिजी बना दिया गया है, उनके आगे इतनी जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं, हस्बैंड जो है उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वाइफ की अपनी हर एक की, और एक सिस्टम है। तो ये सिस्टम को अब हम साथ लेके चल रहे हैं। आप भी इस दौरान मुझे कोई कॉल कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा एक मेरे पास नगमा है, गीत है, और ये जो है इतने ज्यादा घरेलू मसले मसाइल इनके ऊपर अगर लगे रहेंगे ना तो फिर तफरीह तबाह का भी जो है वो मजा किरकिरा हो जाएगा। चले एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं और उसके बाद फिर आ जाते हैं जो रियलिटीज ऑफ फैक्ट्स ऑफ लाइफ है, जो मैं इसके ऊपर फिर बाद में बात करती हूँ। आइए खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

ब्रॉडफ़ोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM पर ये तफरीही तबा का प्रोग्राम आप आयशा अख्तर के संग समात फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट ब्रॉडफ़ोर्ड एशियन रेडियो .co.uk है और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है। जी बिल्कुल, वो ऐसा ही है कि मैं अल्लाह का शुक्र वैसे तो अदा करना चाहिए कि बहुत से खूबसूरत और खुशगवार लम्हे मिल जाएं, और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ ही यही है कि आपका हम सब का जिंदगियों का सफ़र अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत रखे, आमीन। हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आफ़ात व बलियात से महफूज रखे, आमीन। तो बाज़ों का तो आपने भी देखा होगा, नोट किया होगा। चले मैं यहाँ से प्रोग्राम्स की ही हवाले से बात करती हूँ कि बहुत जी आपको मुझे फीडबैक आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे कॉल्स मौसूल हो रही हैं कि ज़बरदस्त प्रोग्राम है, ये है वो है, बड़ा अच्छा मूड है। देन कम बैक टू रियलिटी, जब घर जाती हूँ मैं खुद से देखें, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत अच्छी माशाल्लाह वेरी डिसेंट नाइस फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। ना शुक्री अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ जो मैं खुद का मैं अपना देखूँ ना, एक शटर्ड अराउंड मेरे साथ के मेरी तो इतने कपड़ों से जी नहीं भरता है। विमेन की आप बताएं कि इतने हम कपड़े बनाती हैं, उनको समेटना कहाँ पे होता है, कहाँ पे रख के उनको, इतनी कैपेसिटी हमारे घर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रास जितने भी होते हैं उनको डालने की कोशिश करते हैं। हमारे घर सेट ही हो या कोई हमारे सोफे का स्टाइल ऐसा हो कि हम उनके अंडरनीथ बेड के अंडरनीथ जो है उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, अपार्ट फ्रॉम आवर कबर्ड्स वार्डरोब्स बड़ी बड़ी हैं। तो मैं फिर सोचती हूँ कि ये क्या है कि अच्छा चलिए ये सब कुछ किचन थोड़ा कर ले, ये थोड़े बहुत का मसला नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि थकावट भी होती है काम काज के हवाले से, और यकीन करें समेटना समटाइम्स बहुत फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, क्लीनिंग की बहुत फैसिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक टाइम होता है और ये होता है कि टायर्डनेस जो है ना ये इसके ऊपर कैसे, या फिर ये कह लें कि एक आराम तलबी की आदत पड़ गई। मैं अपने आप से कभी कभी पूछती हूँ कि क्या आराम तलबी की तो नहीं मुझे आदत पड़ गई है, या फिर मैं काम चोर हूँ अपने आप से। हालांकि मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे कहते हैं करती हूँ सब कुछ, लेकिन अपने हवाले से जब काम इतने देखते तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा थोड़ी देर के बाद कर लूंगी, क्या है काम ही करते रहो। समटाइम्स आप से मशवरा लेना है मैंने, चले मर्दों हजरात सारे मेरे सुनने वाले लिसनर्स जो हैं, ये बात तो फिर वही आ जाएगी ना, वो मर्द कहते हैं लो भाई ऐसा कैसा है कि हम बस काम है करना है बस कर लेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि समटाइम्स ऐसा मूड होता है कि बिल्कुल कुछ आराम करने का भी मूड होता है, या कोई स्पेशल, वो तो खैर बच्चों को तो पता है कि आज मॉम का जो डे है ना वो कोई स्पेशल कुछ ना कुछ तो बना ही देते हैं। बल्कि अगर मैं आपको बताऊंगी कि वे जितने काम लिए हुए होते हैं ना, और तो वैसे सारे मुझे कहते हैं कि यार कि क्या कर रही हो कि उनको तुम लगा देती हो कुकिंग, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी डिलीशियस वो बनाते हैं डिशेस के, फिर मैं कहती अच्छा है खुशी से बनाते हो तो फिर करने दो भाई कुछ ना कुछ तो करना है। तो ये जो इस तरह की बातें ना बहुत कुछ दिमाग में चल रही थी, सोचा आपसे शेयर कर लूं। हर रोज तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो बड़ी बड़ी स्किल जो है बुक्स से हम इक्तबासात लेते हैं, बहुत कुछ होता है भाई, लेकिन आज बस मेरा ख्याल है कि वो घर वाली तबीयत यहाँ पे भी यहाँ पे ऐसा हरगिज नहीं है,
मैं बहुत आपकी पसंद का भी ख्याल रख रही हूँ और हमेशा की तरह कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल नेचुरल सा हल्का फुल्का सा प्रोग्राम हो, हमारी तबीयत बोझल ना हो. और ऑनेस्टली स्पीकिंग के मैं समटाइम मैं कहती हूँ टू मच हो गया है, इतना कुछ इर्द गिर्द से इकबालियात रस्तू का नज़रिया के अशफाक अहमद बानो कुदसिया और बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि सम टाइम बिल्कुल नेचुरल पेस पे रहने का एक मूड होता है कि नेचुरली बस चलें ठीक है अभी एक खूबसूरत सा और सॉन्ग लगाऊंगी और फिर उसके बाद चलें तबीयत को इस तरफ लेके आते हैं कि बहुत खूबसूरत सी जगह हैं, चलें हॉलीडेज ही प्लान कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के, बैठे बैठे हम डिफरेंट सिटीज़ कंट्रीज़ का सफ़र करते हैं, देखते हैं वहाँ की तहजीब वहाँ की सकाफत कैसी है, ज़रा इन सब भारीपन से तबीयत को थोड़ा सा मैं ऐसे ही करती हूँ हल्का हल्कापन जब आता है ना तो फिर बारी बारी काम करने जो होते ही हैं वो तो होते ही है ना, घर के रूटीन तो करनी है ना. तो लेकिन ये है कि आई थिंक इट्स नेचुरल, एक नेचुरली हमारी तबीयत है कि हम किसी चीज़ से फेड अप या हो जाए या बोरियत महसूस करने लगे. तो आज सोचा कि आपको डिफरेंट कल्चर जो है सकाफत घर के काम टू बी ऑनेस्ट रोज़ वही डेली एक ही रूटीन और फिर प्रोग्राम्स के हवाले से भी एक ही रूटीन. आज मैंने कहा नहीं, समथिंग स्पेशल एंड यूनिक. आपको पता है कभी कभी तो आशा अख्तर ऐसे करती कर जाती हैं, कहती नो भी आज समथिंग स्पेशल समथिंग यूनिक बट वेरी इन्फॉर्मेटिव. जी इंशाल्लाह, और ख्याल रखूंगी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो यूनिक एंड वंडरफुल, तबीयत जो है हशाश बशाश, जो कि मेरा तो बिल्कुल आज यही मूड है कि अपनी तबीयत को इतना हशाश बशाश हल्का फुल्का धीरे धीरे ताकि इतने जो क्या करें भाई काम करने होते हैं ना तो उनके लिए अपने आप को पहले प्रिपेयर भी तो करना पड़ता है, ये प्रिपरेशन है. तो चलें अभी आपके लिए एक खूबसूरत सा सॉन्ग भी लेके

0: जी सामिन इकराम, प्रोफेशन रेडियो लोगड़ी की तरफ नजर गई है तो अभी बस ब्रेक तक, आफ्टर द ब्रेक समथिंग स्पेशल, समथिंग यूनिक, ब्यूटीफुल म्यूजिक, वाओ, अमेजिंग, आप कहेंगे वंडरफुल प्रोग्राम है जी आज का। और छोड़ें ये काम शाम, ये मैंने, मेरा ख्याल है कि मेरी तबीयत भर गई है वो गार्डनिंग इतनी हैवी टफ टफ काम कर करके ना, फिर नो भाई अब इतना कुछ भी नहीं। और फिर वो आके फिर वही किताबी बातें और वही मैसेजेस, मैसेज नो, अब बहुत ही इतना वंडरफुल, आप खुद भी कहेंगे कि वाओ ये अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। भई हम मजदूर भी, मैंने सबको देखा काम करते हुए, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अब काम काम काम काम, वो तो कायदे आजम ने फरमाया काम काम काम काम बस काम। लेकिन ये भी एक काम है कि आप अच्छे कामों में से बेहतरीन काम तलाश करें। जी मजे सामने ग्राम प्रेफरेशन रेडियो 1430 AM पर बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम। मुझे खूबसूरत से भी बात याद आ गई, खूबसूरत है, खूबसूरत नहीं है जी, बिल्कुल खूबसूरत है जी प्रोग्राम। हमारी वेबसाइट broadfordationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। आज हम भी बहुत ही एक यूनिक किस्म की खूबसूरत सी जो तफरीह तबाह है उससे लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं, ताकि जो फिर वही डेली रूटीन मैटर्स हैं उनमें हम वापस आ सकें। अभी थोड़े से मिनट्स तो रहते हैं इसमें ब्रेक में, तो ये जो सॉन्ग है मैं इसको तरोड़ मरोड़ के वो क्या कहते हैं कटाफटा और बिल्कुल अधूरा आधा नहीं मैं पेश करना चाहती, या ऐसा कि फिर वो मूड जो है ना वो थोड़ा सा दरहम बरहम नहीं करना है। इसको एकदम से सुनना है बड़े आराम से और रिलैक्स होके, तो यू विल रियली इंजॉय दिस म्यूजिक ऑनेस्टली। और अभी सरप्राइज ही है आप सबके लिए, टॉप सीक्रेट तो अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करती अपने म्यूजिक को, आफ्टर द ब्रेक आप खुद देख लेंगे और फिर आप खुद भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे वाओ इट्स रियली अमेजिंग। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे ख्याल में तो मैंने सबसे बात की अपनी फ्रेंड से भी, अपने हल्का अहबाब, तो उन्होंने बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा ही है, वरना तो इंसान जो है वो यकसानियत जिसे कहते हैं ना उसे बोरियत महसूस होने लग जाती है और इतने भारी भरकम जो प्रोग्राम्स भी कह लें और रूटीन, डेली रूटीन मैटर्स जो है ना वो हजम नहीं होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा लाइट मीडियम पेस पे चलना बहुत ज़रूरी होता है। और समटाइम तो ऐसा होता है कि बस आज मेकअप डे है, आज मेकअप का हशर नशर करना है और अपने आप को हर अंगल से, वीमन यही करती है, मतलब पहले बहुत करती होती थी कि बस मेकअप और कुछ नहीं, तो बेचारे बालों की श्यामत आई है कि अपने हेयर स्टाइल जो है ना, अपने बाल इतने लंबे घने खूबसूरत, बस उनको नहीं जी थोड़ा सा स्टाइल देना है। ऑनेस्टली मैं वैसे अगर आपको बताऊँ ना, ये बहुत मेरा होता था कि बस हमेशा मेरी तान टूटती थी हेयर स्टाइल में, नहीं इसको, लेकिन अब शुक्र है मैं खुद भी अल्लाह का शुक्र, क्योंकि मुझे लंबे घने बाल बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह, और मैं बड़ी इनकी केयर में हो ही नहीं सकता। और कभी कभी ब्यूटिशियन के पास जाएं तो वो भी हमें, आप क्यों नहीं ऐसे लेयर्स इन दिस एंड आई सेड नो प्लीज, अब कुछ भी नहीं होगा, आज कल मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत लंबे बल्कि हो सकता है बहुत ही लंबे मेरे बाल, घने खूबसूरत हेयर स्टाइल जो होता है उनका अपना ही होता है। खैर, और वो प्लाट्स वगैरह करने का मुझे आजकल देसी स्टाइल बनने का बनाने का स्टूडियो में भी बैठी ऐसी कर रही, तो ये खवातीन के लिए जो है ये सारे टिप्स हैं और खवातीन के लिए इस स्पेशल एक छोटा सा पार्ट मैंने रखा प्रोग्राम का, तो ताकि हम दोबारा से नए सिरे से जो है अपनी जो मसरूफियात है उसमें कूद पड़े और खुद को भी इंजॉय करने का मौका दें, दूसरों को भी खुश रखें, खुद खुश होंगे तो दूसरों को खुश रखेंगे। क्या ख्याल है आपका? चलिए चलते एक ब्रेक पर।
1: On 14:13 AM.
2: And the winner is.
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
0: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट की स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आपने बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: You're listening to
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो on 1413 AM।
0: जी बिल्कुल सामाई निक्राम, ये ब्रॉडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM है। हमारी वेबसाइट broadfordasianradio.co.uk है जी, और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है। दिलों को थाम ले और सब जो परेशानियां हैं, गम हैं, उलझने हैं, मुसीबतें, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन। ये परेशानियों से जरा दिमाग को रोशन करने के लिए ये एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग जो है आराम से सुनते हैं मैं भी और आप भी, ताकि फ्रेश हो के इंशाल्लाह फ्रेश हो के हम अपने डेली रूटीन मैटर्स जो हैं उनको बहुत ही उम्दा तरीके से करने के, दोबारा करने के काबिल हो जाएं। आराम से दिलों को थाम के एक अछूता और नयापन, जी मेरे प्रोग्राम में भी अछूता और नयापन, एक नया इजाफा और नया इजाफा भी कहेंगे और एक यूनिक चॉइस भी कहेंगे, और फिर मुझे बताइएगा कि ये चॉइस कैसी है। जबरदस्त है, मैं भी फेडअप हो गई, बोरियत महसूस होने लग गई, यकसानियत जो है ना समटाइम्स अच्छी भी नहीं लगती है, थोड़ी सी समथिंग स्पेशल एंड डिफरेंट। आइए सुनते हैं।

मोजेस सामईन इकराम, बिल्कुल मैं थोड़ी सी थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं कह सकते, हैप्पी हो गई, खुश हूँ भाई। एक तो अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा, कोफ तो दूर हो गई, थकान दूर हो गई, तबीयत ऐसा हल्की फुल्की और लाइट लाइट सी। और इसकी आप वीडियो भी देखिएगा इस सॉन्ग की, और इसमें जो वो है क्या कहते हैं ज्वेलरी है ना, अमेजिंग ज्वेलरी, वाओ। और ड्रेसिंग ड्रेस जो है ना, उसने ड्रेसअप हुई हुई है जैसे वो बहुत ब्यूटीफुल सी एक लड़की, वेरी ब्यूटीफुल है ये। इसकी ऑडियो एंड वीडियो कमाल की है। अच्छा हुआ थोड़ी तबीयत हल्की हो गई, और दूसरी बात जिससे तबीयत थोड़ी सी और ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि बैक होम हमारे कंट्री पाकिस्तान में भी हमारा प्रोग्राम जो है वो सुना जा रहा है, और आशा अख्तर के चुटकले और आशा अख्तर की शरारतें जो हैं वहाँ पे भी सर उठा रही हैं। कभी कभी कभी कभी होता है ऐसा मूड कि बस अच्छी, एंड अब आपको क्या किसे कहानियां मैं सुनाने लग गई तो आप बाप रे बाप सीरियस होना पड़ता है भाई। मैं वाकई सीरियस हो गई हूँ लाइफ में लगता है मुझे, नहीं तो कभी किसी की खातिर में भी नहीं आते थे, और अब ज्यादा ही जब मैं सीरियस हो गई तो अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन, बहुत खुशियां दे हमारे ब्रादरे हकीकी पाकिस्तान में। यहाँ के वो कहते हैं पता है यहाँ की रूटीन के मुताबिक, फिर तुम्हें बड़ा शौक था ना सारा सेटअप यहाँ रखने का, तो अब हमें ना वो तुम्हें पहले ही बेचारे उलझे हुए होते, तो बस थोड़ी सी बात से ही अंदाजा लगा लेते हम लाख छुपाए अपने आंसुओं को अपने गमों को। अल्लाह तो बस, तो फिर अल्लाह का शुक्र है, लेकिन देखिए इतने बोझलपन को लाख छुपाए तो पता तो चल ही जाता है। ओ नो नो नो नो नो पुत्र, ये क्या हो गया बेटा जी, तुम कॉन्फिडेंस लूज कर रही हो अपना। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत नहीं नहीं नहीं तुम्हारा वो पहले वाला कॉन्फिडेंस उनको पता था ये कहाँ टिकने वाली होती थी, यहाँ तो बड़ा वो, बस ये रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं जी। तो नहीं अब अपने आप को मेक योरसेल्फ स्ट्रांग, आई सेड आई एम स्ट्रांग, नहीं वो फिर डोज मिली काफी हद तक, तो फिर ये रिश्ते अल्लाह ताला सबके सलामत रखे, भाई बहनों के भाभियों के माशाल्लाह अपनी सारे अल्लाह पाक। ये होते वक्ती तौर पे हमें इख्तलाफात हो जाते, और यही मैं आज डिस्कस करना चाह रही थी आपके साथ कि घरेलू जो ख्वातीन को रिश्तेदारियां जो है बहुत कुछ ऑनेस्टली दिखे समेटनी पड़ती हैं, ज़्यादातर जो इसे हम बोझ कहेंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लेते हैं ख्वातीन के शोल्डर्स पे होती है कि आपने हर रिश्ते को खुश रखना है। आप सब सुनाएं बताएं तो कि, और पापा की गुड़िया मामा की जान, तो एक दिन तो फिर वो सारे, ये इस नेचुरल प्रोसेस के हमने उससे गुजरना, फिर जाके मंजिल मिलती है। क्या ख्याल है, बात तो फिर वही आ जाती है ना, बड़ी जिम्मेदारियों की हकीकतों की। लेकिन चले मैं उसमें मैंने बहुत कोशिश की है आप सबको भी लाइट पेस पे रखने की, क्योंकि हो गए थे वो तौबा, बस इतना भी नहीं, भी ठीक है आप माशाल्लाह पता चल रहा है मैच्योर हो गई है और माशाल्लाह अच्छी जिम्मेदारी है, लेकिन अब थोड़ा सा भाई अपना रंग रूप बरकरार रखो। मैंने कहा अच्छे चले ठीक है, तो फिर सोचा आपके साथ शोक शोक शुरुआतें तो नहीं कहूंगी, शोक शोक चंचलपन जो है
उसको बरकरार रखा जाए, वरना वही आ जाएगा कि हम तो बाहर टिश्यू लेके टिश्यूज के बॉक्सेस लेके खड़े हैं। आई सेड नो भाई, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब देखिए, सीरियस तो होना पड़ता है लाइफ में, मेच्योरिटी की तरफ भी ऑब्वियसली, एज नहीं आगे बढ़ना है, पीछे तो नहीं आना है। सोच रही थी मैं कि ये अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना कि आगे बढ़ना, तो फिर मैं बच्चों को, कल मेरा एक मुशाहिदा हुआ, बच्चों को वॉच कर रही थी कि वो खेल रहे हैं गार्डन में। मैंने सोचा कि जब मैं मतलब इस एज की थी तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी बड़ी भी बनूंगी, कभी ऐसे अपने माशाल्लाह आगे बच्चे, और टू मच नहीं कभी सोचा था। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं दोबारा से ये बचपना लेना चाहूं, मेरे अंदर से आवाज आई नो नो नो, फिर बड़ा, क्योंकि अब हम देख चुके हैं कि लाइफ का सफर जो है वो जारी रखना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जैसे उन्होंने, आपको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाकया कि एंड ऑफ द डे तो मौत ही खड़ी है ना सर पे, तो रियलिटी ऑफ लाइफ के अल्लाह ताला ने जब एंड पे फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाओ कि अगर तुम बनी इसराइल की भेड़ों के सरों के ऊपर हाथ रख दो तो उनके नीचे जितने बाल हैं मैं उतनी तुम्हें उम्र दे देता हूं, मैं कुर्बान जाऊं रब्बे अजीम के, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए, मैं उतनी उम्र देता हूं। तो फिर उन्होंने पूछा मलकल मौत से, फिर उसके बाद उन्होंने कहा उसके बाद फिर मौत है, तो ये है, तो उन्होंने कहा तो फिर क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं मैं अपने रब के पास जाऊं, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए। तो यही बात मैंने पूरा, भाई फिर मुझे आ जाएगी कॉल, आ जाएगी आप पूरा वाक्य ऐसे ऐसे, आई नो कि बहुत लंबा है लेकिन मैं प्रोग्राम को तवील नहीं करना चाह रही हूं, तो मैं एक मुख्तसरन बयान बात कर रही हूं कि उस बच्चे की तरफ देख के मैंने कहा नो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक फिर से दोबारा, नहीं नहीं नहीं। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यही है रियलिटी ऑफ लाइफ, इससे गो थ्रू निकल के, और दुआएं अल्लाह ताला से ढेरों ढेर है, जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर खूबसूरत हमारा सफर रहे इंशाल्लाह, और हर एज ग्रुप को जो है हम उसको इंजॉय और बेहतरीन, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे अबाओ अजदाद हमारे लिए नमूना बने बेहतरीन, तो बस जी ये बनना है। अब काम आयशा अख्तर जी देख लो, इतना देर ना अपने लिहाज से सबका, तो माशाल्लाह सब तरीके सलीके से एवरीथिंग इज फाइन, अपनी बारी पे आगे जाके कह देती हूँ अच्छा क्या है कर लूंगी, कोई बात नहीं, मेरा ही रूम है, उलझे सुलझे हैं तो सुलझा लूंगी भी। फिर कल का जब मैंने कहा नहीं, अब कुछ ना कुछ, और पता बात ये होती कि हम हेल्प ढूंढते, अल्लाह ताला से दुआ, या अल्लाह प्लीज मुझे कोई हेल्पर दे दे, जो भी कहते बीबी हमें माफ करो, हमारे पास तो और बड़ी जिम्मेदारी है, तुम अपना काम खुद ही करो। और जो हेल्पर्स भी है ना, उफ खुदाया, वो कहते हमें तो ये इतनी अच्छी जॉब मिली हुई है भाई, सॉरी हमारे पास टाइम नहीं, अभी क्या करे बंदा, मरते डरते करते खुद करना होता है। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, पहले अपने आप को बिल्कुल फ्रेश करो, अच्छा सा म्यूजिक, अजी सी तफरी है तबा, और ओ वाह, मैंने कहा आज तो रेडियो डे है ना भाई मेरा, तो आज प्रोग्राम भी नाइस से करते हैं, साथ साथ मैं अपने आप को जरा लाइट मोड पे लेके जा रही होती हूँ, साथ मजे सामीन कराम को, और फिर फीडबैक आ रही है, हमें बड़ी बड़ी दूर से सुना जा रहा है जी, सराहा जा रहा है मेरे प्रोग्राम को, तो क्या ही बात है। तो सबके पहले मूड को बहाल जब रखते हैं ना, तो फिर अपना मूड ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत हो जाता है। मैंने बहुत दफा ऐसे देखा, मैंने कहा चल भी काकी आज तू ना, हमारे हमारे बड़े जो है हमें काकी बुलाते हैं ना, भी काकी है ना, क्या हो गया है, इतने भी बड़े नहीं है हम। तो वो फिर और काकी तो हत्ते से गई, क्या हो गया है,
इतने सीरियसली बनना है? मैंने कहा अच्छा वो पता है आशा अख्तर के आंसू, तो मैंने कहा क्या है? वो कहते हैं कोई नहीं, जब रिलीजियस प्रोग्राम कर रही होती हो या वैसे कुछ तो दिक्कत तो होती था इस नेचुरली से, नहीं घबराओ, तो वैसे तुम ठीक हो बिल्कुल। नहीं कहा ठीक है ऐसी भी anyway, मेरी बातें जो है तवालत न पकड़ जाए, और वो तो बिल्कुल भी नहीं आपको होने दूंगी भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत सा एक और सॉन्ग, यकीन करें मुझे वो बहुत अच्छा लगा, और ये वाला सॉन्ग जो है ना आप फिर इससे लुत्फंदोज होंगे, और मुझे नहीं पता है कि वैसे मुझे क्या फीडबैक मिलेगी, सो फार तो बहुत अच्छी मिल रही है। देखें इतनी दूर से पाकिस्तान से मुझे सराहा जा रहा है और मेरे यूनिकपन को, वाओ कहते हैं यही तो बात होती है एक मुनफरिद प्रेजेंटर की, जी क्या बात है। चलें एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं ताकि तबीयत तो और जरा लाइट पेस पे जाए, बहाल हो जाए, और फिर नए सिरे से और जो आपके पसंदीदा सॉन्ग है फिर वो बता दें, फिर मैं वो लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये एक क्यूट सा गाना सुनते और फिर उसके बाद फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।

0: जी बिल्कुल, प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM और हमारी वेबसाइट preparationradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। बिल्कुल जी, ब्रेक का टाइम भी है और पाकिस्तान से हमें श्याम जी ने ज्वाइन किया हुआ है और उनकी फीडबैक जो है मुसलसल मौसूल हो रही है। ही इज इंजॉइंग आवर प्रोग्राम और टॉपिक उन्होंने पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। और इनके खुद के भी प्रोग्राम्स जो होते हैं लाजवाब कमाल के होते हैं और कमाल के प्रेजेंटर हैं ये भी। और इनको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो बहुत, मैं तो कहती हूँ बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि। और अभी तक हमें यहाँ से ब्रैडफोर्ड से या मैनचेस्टर से अभी हमें कोई भी कॉल जो है मौसूल तो नहीं हुई है। इट मींस कि आप एग्री कर रहे हैं हमारी चॉइस से। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं।
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
5: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
3: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
3: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
6: बालियां, अंगूठियां और हार,
3: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
3: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स में शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
3: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
7: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स 121 ओकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260007।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी मेनी स्टोर? रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, सामईन इकराम, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM इस वक्त आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और एक बेहतरीन प्रोग्राम, और जिसके बारे में हमें ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छी फीडबैक भी मिल रही है और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आपकी तबीयत के पेश नज़र बहुत लाइट वेट हमने रखा है इस प्रोग्राम का, और इस प्रोग्राम में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रेजेंटर के साथ साथ मेरी तबीयत के साथ साथ आप सबकी तबीयत बहाल रहे। कोई तबीयत के ऊपर आज हमने भारीपन नहीं डालना है, बड़ा हमने काम डाउन होके और पुरसकून तरीके से रिलैक्स होके अच्छा सा प्रोग्राम करना है। क्या ख्याल है आपका? जी, हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी तबीयत जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, कामकाज में दिलचस्पी बरकरार है, और बिल्कुल भी जी आपको हम इधर उधर होने कैसे दें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स का सारा दारोमदार इन्हसार आप पर होता है। हमारी ऑडियंस और हमारे लिसनर्स जो है वो ही हमारे प्रोग्राम्स को कामयाब बनाते हैं भाई, तो फिर कैसे हो सकता है कि हम आपको रत्ती बराबर, जिसे कहते हैं, बोरियत महसूस होने दें या भारीपन आने दें तबीयत पर? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जो रियलिटीज ऑफ लाइफ हैं, काम काम काम, इनको हमने करना है ऐसे डिवाइड, इनकी डिवीजन जिसे कहते हैं, इनको ऐसे डिवाइड कर लेना है, सारे कामों को हमने एक तरतीब इनकी ऐसे देनी है कि अगर देखिए, हम मुद्दा जिसे कहते हैं उसके ऊपर आते हैं, बजाय ये कि ये काम हमें दबोच ले, हम क्यों ना काम को दबोच लें। कैसी कैसी बात है, एक बेहतरीन बात है, बेहतरीन टिप है। बहुत भारी काम के बाद थोड़ा सा तबीयतों को रिलैक्स करें, और क्या ही बात हो कि अगर आशा अख्तर का प्रोग्राम हो और आप सब सुनने वाले हों तो फिर तो और भी लुत्फ दुबाला हो जाता है, तबीयत जरा होगी नरम मुलायम और हल्की हल्की सी, फिर नए सिरे से कूद पड़ना है अपनी रूटीन में, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा सा खाना पकाने का मूड नहीं है जी आज। आशा कह रही है कि नो वे, मैं तो बस मूड नहीं, जब मेरा मूड नहीं होता है, घर वाले कहते बीमारों जैसा खाना बना दी तो फिर क्यों हम जाया करें रिस्क को, तो बेहतर है। अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि फैमिली को अल्लाह ताला सलामत रखे। ये नन्हे पौधे, नन्हे मासूम फरिश्ते जो है, मैं कहती हूँ या खुदाया तेरा बहुत शुक्र है। इसलिए आयशा अख्तर हर वक्त अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सलामत अल्लाह सलाम रखे। ये नन्हे पौधे मासूम फरिश्ते जो है, मैं कहूँ या खुदाया तेरा बहुत शुक्र है। इसलिए आयशा अख्तर हर वक्त अल्लाह।

फ्यूल अप, जिसे मैं कहती हूँ थोड़ा सा फ्यूल डल गया रिफ्रेशमेंट का, तो नए सिरे से फिर काम तो करने ही होते हैं, लेकिन माशाल्लाह फिर बहुत अच्छे लगते हैं और फिर वही काम इतने अच्छे लगने लग जाते हैं। मैं तो ये ऐसे जो है, मैंने कहा कि आज प्रैक्टिकल सी बातें हो जो, और इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो अपने रूम को किधर से शुरू करूं और किधर पे खत्म करूं, डर गई हुई कि ये मेरा ही काम है इतना। तो फिर खुद से सोचा, खुदाया जब इतना तुम लापरवाही करोगी तो फिर ये तो होता ही है। लेकिन वो यकीन करें कि जब फिर करने लगती है ना तो वो मिनटों सेकंड में खत्म हो जाता। तो मुझे फिर महसूस हुआ कि ये हमारा मूड भी होता है समटाइम्स, कि बस मूड नहीं है तो एक काम छोटा सा भी बड़ा लगता है, और मूड करने का हो तो बड़े बड़े काम भी हम ये तो मेरी बहनें भी खैर कहती होती है, मोहतरमा का मूड हो तो बड़े बड़े पहाड़ भी सर कर लेगी, और अगर नहीं है तो कतरे पे बैठ जाएगी कि बस मूड नहीं है। तो मैं इसलिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि मूड जो है ना वो बहाल रहे। देखिए मैं कितनी अच्छी एफर्ट्स कर रही हूँ ना, अच्छी बात है ना। देखिए भाई, अपनी सेहत का, अपनी तफरी का तो सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जब ही हम सबके लिए कारामन साबित होंगे ना, तो अगर अपने आप को इग्नोर करेंगे बोरियत और वही लटका लटका के, ये भी अच्छी बात नहीं होती। हर काम को स्लीक के तरीके से तो करना ही है, और उसके लिए अपने आप को थोड़ी एक्स्ट्रा रिफ्रेशमेंट दे देते हैं, ये भी गुड है। क्या ख्याल है आप लोगों का? आइए एक बहुत ही, ये आवाज जो है ना, अगर आप सुन के तो महसूस ना हुए तो फिर कौन सी आवाज से आपने महसूस होना है। इसमें इसकी वीडियो भी आज बस थोड़ा सा शरारतों का कहले मूड है, तो वो शरारती शरारती पन है जी इसमें सॉन्ग में, आप भी देख लीजिएगा वीडियो, अच्छा है, आज के टॉपिक के लिहाज से अच्छा है। चले देखते हैं, आप भी स्मार्ट फरमाएं।

जी सामाईन इकराम, ब्रॉडफुट एशियन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर के संग बहुत ही बेहतरीन, इसलिए बेहतरीन कहेंगे कि जब हम अपने आप को भी खुश रखने के साथ साथ सबको खुश रख रहे हैं, एक अच्छा खुशगवार सा माहौल बना हुआ है, तो इससे बेहतरीन हमारे पास और कौन से लम्हात हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM पर ये बहुत ही खूबसूरत तबीयत को बहाल रखने वाले और मैं तो कहूँगी बहुत खुश रखने वाले वाला जो प्रोग्राम जो है आशा अख्तर के संग आप समाप्त फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी, और स्पेशली जब हमें बैक होम अपने कंट्री से हमें ज्वाइन किया हुआ हो और फीडबैक बहुत बेहतरीन आ रही हो तो खुद का भी मन जो है वो खुशी से झूम उठता है। और इस वक्त बस म्यूज़िक का सहारा अपने आप को खुश रखने के लिए लेते हुए एक ऐसे सॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे जो अभी फिर सरप्राइज ही है, आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और थोड़ा सा दिलकश सा ये भी टच इस म्यूज़िक में दे दें तो क्या ख्याल है। और बाकी बातें जो है टॉपिक भी चल रहा है अभी है, दुरानिया भी हमारे प्रोग्राम का पड़ा है, आपकी शमूलियत भी इसमें है तो वो भी साथ साथ जो है वो डिस्कस होता रहेगा। तो इस वक्त एक और खूबसूरत सा हम नगमा जो है वो सुनते हैं और आप बताइए आपको कैसा लगा।

0: वाह जी वाह, क्या बात है जी। पंजाबी वो कहते होते हैं, कभी वो कहाँ पे तृंजनों पे पानी भरने जाना, कुछ ऐसे ही होता है भाई। चले, आप खुद करेक्शन कर लीजिएगा। तो पंजाबी हर किस्म का इस वक्त जो है सॉन्ग, हर रीत और रिवाज के मुताबिक जो है, क्या ख्याल है कि मूड के साथ साथ हम मौसीकी का सहारा नहीं ले रहे? तो वैसे आपस की बात है, और वेरी ट्रू एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि वाकई इससे काफ़ी हद तक जो है स्ट्रेस रिलीज हो जाती है और मूड जो है बैक टू स्क्वायर आ जाता है। आपका क्या ख्याल है? आप भी अपनी आरा हमें जरूर दीजिएगा, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मजीद जो है अच्छी अच्छी बातें समेटते हैं, और आप भी हमारी बातों में हिस्सा लें, शामिल हो जाएं हमारे साथ। और बिल्कुल हमेशा की तरह 01274 30 6677 हमारे स्टूडियो का नंबर है, मिलाएं कॉल। और अपनी कोई चॉइस है तो वो भी बता दें। अगर हमारी चॉइस के साथ एग्री कर रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हम बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं, अपना भी ख्याल रख रहे हैं और आप सबका भी, कि मूड जो है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द वेदर भी रहे, और कुछ हम दोबारा नए सिरे से अपनी डेली रूटीन लाइफ को अच्छे तरीके से समेट सके। चलते हैं एक ब्रेक पर।
1: एंड द विनर इज
2: योर बिजनेस बीइंग हर्ड ऑन द रेडियो।
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping, featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच मोगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
11: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

समय ग्राम ब्रॉडफोर्ड एशियन रेडियो 14:13 AM पर आज की नशियात जेर समात है आप सबके। हमारी वेबसाइट broadfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है। जो पहले हमने सुने वो क्या कहते हैं पंजाबी में वो क्या थे टप्पे थे, हाँ जी माइये टप्पे, तो उसमें भी कुछ ये जो अभी मैंने एक सॉन्ग सिलेक्ट किया है कुछ इसका तज़किरा था। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि जो जिनसे हमारी यादें भी रिलेटेड होती हैं और वो भी ठीक है कि यादों के अलावा कुछ हम वाकई जो है कुछ ऐसे लम्हात में अगर चले जाएं तो वो लम्हात के जो आपके पास एक मोमेंट्स थे खुशी के और वो यादें थी जिन्हें अनमिट और अनमोल यादें कहा जाता है, तो वो गीत उस वक्त जब फिर सुना जाता है तो वो फिर और भी ज़्यादा लुत्फ देता है। जब आप फिर महसूस करते हैं कि अब थोड़ी तबीयत जो है अब मतलब यकसानियत से भी आप बोरियत महसूस कर रहे हैं और कुछ आप माहौल से हटना चाहते हैं जो करंट माहौल है आपका, तो आप फिर पास्ट में झांकते हैं और कुछ ऐसे वहाँ पे खूबसूरत लम्हे गुजारे होते हैं कि जो आपको बड़ी खुशी दे जाते हैं। उस वक्त भी आपने आप उनसे महसूस हुए, वो दौर आपका लड़कपन भी हो सकता है, वो दौर आपका स्कूल का दौर भी हो सकता है और कॉलेज का, आपको पता है यूनिवर्सिटी का दौर जो होता है ये एक अलग ही अफादियत का हामिल होता है और वहाँ पे फिक्रें और जो होती हैं सारी मरकूज़ होती हैं, फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, करियर और जॉब और घर के जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो ये सारा कुछ जो होता है ना तो कुछ सिमिलर सा भी लगता है। क्या ख्याल है आप लोगों का, इस बारे में जरूर सोचिएगा। तो ये एक मेरे पास सॉन्ग है और कुछ कहूंगी कि कुछ अछूतापन सा है इसमें और लग तो यही रहा है कि अब हमने एक टॉपिक भी रखा है और उलझते सुलझते इन धागों को फिर भी हम सुलझती डगर पर लेके आना चाहते हैं। क्या ख्याल है, चलिए आइए सुनते हैं ये एक और खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

जी, सामईन इकराम, ब्रॉडफोर्डेशन रेडियो 1413 AM पर ये प्रोग्राम जो है आपके लिए पेश किया जा रहा है हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, और जितने हमारे कॉलर्स और जितने हमें सराहने वाले उन सब का शुक्रिया, और फीडबैक देने का बहुत शुक्रिया जी। और कंक्लूजन की तरफ तो उस वक्त बढ़ेंगे जब हमें पता चलेगा कि आप काफ़ी हद तक जो है वो खूबसूरत, और जिसे कहते हैं ना कि एक हल्की फुल्की तबीयत के साथ जो है अपने काम भी अंजाम दे रहे हैं, हमारा प्रोग्राम भी समाप्त फरमा रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है, और आप ये देख रहे हैं कि आपके मनपसंद जो सॉन्ग्स हैं वो चल रहे हैं, और म्यूज़िक जो है टेंशन रिलीज करने में हमारी हेल्प कर रहा है, और सोचें और तफक्कुरात जो है इंसान को घेर लेते हैं म्यूज़िक वहाँ पे, और आशा अख्तर की बातें वहाँ पे कहाँ किस हद तक जो है अफेक्टिव रोल जो है वो अंजाम देती हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज के प्रोग्राम में बहुत हद तक हम एक नए मूड के काबिल हो चुके हैं। भाई, मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वाकई महसूस कर रही हूँ कि एक नए सिरे से एंथुजियास्टिक टू डू माय जॉब अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह। इवन दो इस इट कुड बी हार्ड, इट कुड बी टफ, बट लेकिन ये है कि वी हैव टू डू द जॉब, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और थोड़ी देर के लिए तो बगावत हो सकती है, लेकिन वो बगावत नहीं कहेंगे, थोड़ी देर के लिए रिफ्रेशमेंट बस, लेकिन समटाइम्स इंटरवल्स शॉर्ट ब्रेक्स होती हैं जिसमें हमें अपने मूड को बहाल करना पड़ता है, और समटाइम्स इट कुड बी लॉन्ग टर्म, तो कुछ और वैसे फिर जो हॉलीडेज प्लान करते हैं तो फिर तो और भी ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है बैक टू नॉर्मल लाइफ, फिर बैक टू नॉर्मल रूटीन और काम काज की। और बहुत मेजॉरिटी ऐसी है जो बहुत लाइक करते हैं हॉलीडेज को, फिर मैंने वही बात बताई जिनके सोर्सेज नहीं है, जो लिमिटेड सोर्सेज के साथ होते, तो फिर वो देखिए बैक होम प्लान करना कंट्री का वो एक अलग बात होती है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है, आप नए सिरे से एक दूसरे माहौल को फिर आके अपने माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये सारी बातें जो है मैं समझती हूँ आज के टॉपिक में न सिर्फ मैंने खुद से भी इनका जो कहते हैं ना कि एक तरह की रिवीजन हो जाती है बंदे को, मैंने इनको नए सिरे से देखा और खुद से एक नई तरतीब जो है वो जहन में आती है, तो फिर साथ हमारे सुनने वाले सामईन इकराम जो है वो भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बल्कि आप सबकी तफरीह तबा का पहले ख्याल रखा जाता है। तो ये सारी बातें जो है ये जब एक मूड बहाल हो जाता है तो जी बिल्कुल फिर हम आइए एक गीत सुनते हैं, और इस गीत के बाद फिर चलें हम हॉलीडेज जो हैं यहीं पे बैठे कुछ प्लान करके डिफरेंट जगहों का जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में चलते हैं, कंट्रीज़ में चलते हैं, झांकते हैं वहाँ की तहजीब व तमद्दन, और फिर आके अपनी जो ये रूटीन है इसको फिर देखते हैं, ताकि भाई मैं खुद भी कहती होती हूँ क्या है कि भाई आजकल तो मीडिया के ऊपर इतना कुछ देखने को मिल जाता है, लेकिन हॉलीडेज की अपनी एक भाई इम्पोर्टेंस है, वो उससे तो कोई हम नहीं नज़रें चुरा सकते, अगर नहीं है फिलहाल हमारे पास इतने सोर्सेज, इतना हम नहीं
कर सकते इंतज़ाम तो कोई बात नहीं, हम आपको और मैं खुद भी सफ़र करते हैं, डिफरेंट जगहों का चलते हैं और अपने मन को खुश करते हैं, यही तो रिफ्रेशमेंट है, यही तो तफरी है, तबाह फिर उसके बाद तो वही काम है इंशाल्लाह, और उन्हीं कामों में फिर जुट जाना है, क्या करें भाई, ये भी ज़रूरी है। आइए एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: जी मज़े सामीन इकराम, ब्रॉडफेडेशन रेडियो 1413 AM पर ये प्रोग्राम आप आयशा अख्तर के संग समात फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट broadfedationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है। हम बहुत जिसे कहते हैं शुक्रिया अदा करते हैं हमारे रेगुलर कॉलर फ्रॉम पाकिस्तान शाम जी, और उनकी फीडबैक का भी और प्रोग्राम को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। और खुद भी आप बहुत ही एक टैलेंटेड प्रेजेंटर हैं और इनके जो प्रोग्राम्स भी होते हैं बहुत ही शानदार और खूबसूरत होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया, और सॉन्ग्स इसमें जो आपको सुना रहे हैं उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। जी सामईन इकराम, धीरे धीरे बस हमारा प्रोग्राम जो है वो अब मंजिल की तरफ इख्तितामी लम्हात में कंक्लूजन तो यही होता है कि बस खुश हो जाएं, आप सबको प्रोग्राम पसंद आ रहा है और प्रेजेंटर जो है वो अगर पेश करते हुए उसका भी मूड जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, तो इट्स रियली वेरी गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब को हमारा आज का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा लगा, और यही जो हमारे डेली रूटीन मैटर्स और डेली जो काम होते हैं, मैंने यही पहले जिसे कहते हैं अर्ज किया कि सबको प्रायोरिटी लिस्ट पर रखना इंसानियत की मेराज है, इंसानियत का ख्याल रखना है, और मेराज से मुराद के इंसानियत की बहुत इज्जत और तकरीम है। ठीक है, ये वर्ड जो मैंने यूज़ किया इंसानियत की मेराज, एक बुलंदी का, एक अच्छाई की सेंस में कि इंसानियत का ख्याल रखना बहुत ग्रेट टास्क है, और सब रिश्तों को साथ लेके चलना, सब की इज्जत और तकरीम करना, और फिर उससे जो उसमें थोड़ा सा मैंने ये अपने आप को निगलेक्ट के साथ थोड़ी निगलेक्ट हो जाती है समटाइम्स, लेकिन वही बात मैंने कही कि कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम ओवरकम आ जाएंगे, मेरा अपना ये काम है, थोड़ा सा मैं इसको डिले भी कर लूँगी, इट डजेंट मैटर, बिकॉज देन आई नो I will inshallah, I have to do this inshallah. So मैं तो यही एक चीज़ जो है फील करती हूँ कि इससे खुशी बड़ी होती है। और फिर देखें, मैंने अच्छा प्लान किया ना, अच्छा सोचा, अच्छा मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि हम डिफरेंट जगहों का सफ़र करते हैं, वो भी मेरे जहन से, लेकिन ये भी अच्छी बात हो गई कि ये भी बहुत ज़रूरी बात थी कि फिर देखें अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करने के बाद रिफ्रेशमेंट, अपने आप को भी खुश रखना चाहिए। जब हम अपने आप को खुश रखते हैं तो सारी, बल्कि कुछ लोग तो यही कहते हैं कि अपने आप को तो खुश रखना बहुत क्या, बल्कि प्रायोरिटी लिस्ट पे हमें रखना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रायोरिटी लिस्ट पे रखते हैं हम अपने आप को, लेकिन ये मैं तो हमेशा ख्याल रखती हूँ कि दूसरों की रूटीन मैटर और दूसरों की ज़ात जो है उसको हमेशा अच्छी सेंस में फ़ायदा ही पहुँचना चाहिए, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वरना मैं रिग्रेट करती हूँ बहुत से मोमेंट को कि क्यों मैंने दूसरों, मेरी वजह से दूसरे क्यों तकलीफ़ में, अल्लाह ना करे पहुँचे, और ये बहुत अच्छे ख्याल होते हैं बिल्कुल, क्योंकि मेरी घड़ी की तरफ नज़र है कि अभी हमने ब्रेक पे भी जाना है। और चलिए ऐसा करते हैं कि एक सॉन्ग भी मैंने आपके लिए बहुत ही दिलकश सा चुना हुआ है, और ये मेरा ख्याल है तकरीबन सब ने ही ये मूवी जो है ये फिल्म देखी होगी, और सरप्राइज ही रहने देती हूँ, जब आप सॉन्ग सुनेंगे तो वाकई आप कहेंगे कि वाकई ये बड़ा फेमस हुआ सॉन्ग, और मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए फिर लगाते हैं एक दफ़ा। तो अभी हमारा जो टाइम है वो ब्रेक की तरफ जा रहा है, ब्रेक पर जाने से पहले रिश्तों से जुड़े एक बहुत ही अनमोल मैसेज को मैं ज़रूर यहाँ पे जो है अपना मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि रिश्तों में, रिश्तों के तकद्दस का मेरे ख्याल में जो है एहतराम और ज्यादा उस वक्त बढ़ जाता है जब जेलसी, हसद, दुश्मनी, अनाद, बुग्स और कीमा परवरी जैसे, ये कीमा परवरी जैसी बुरी खसलतें इंसान डिटेक्ट कर दे फ्रॉम आवर पर्सनैलिटी, इफ वी डिटेक्ट दीज बैड थिंग्स फ्रॉम आवर पर्सनैलिटी, वी कैन रियली इंजॉय द माशाल्लाह द ग्रेटनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप्स, ऑफ वेरी क्लोज रिलेशनशिप्स, वी कैन से दैट. सो हमें अपने करीबी रिश्तों के तकद्दस के लिए अपने दिलों को साफ रखना है. मैंने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि जब दिल अल्लाह ताला नूर भेजता है फरिश्तों के ज़रिए से कि जाओ इन दिलों में, फिर अल्लाह ताला, फिर ये भी होता है कि ये नूर फरिश्तों से कहा जाता है, अल्लाह ताला कहीं बेशी माफ़ फरमाए, कहा जाता है कि इसको वापस ले आना अगर किसी के दिल में कोई कीना कोई हसद, ऑलरेडी उसका दिल खाली ही नहीं, फिर वहां पे नूर कैसे जागेगा, नूर कैसे पहुंचेगा. तो ये नूर और नूर की रोशनियां जो है ये खुद से भी सैराब, अल्लाह ताला हमें करे आमीन, और हम दूसरों के लिए भी रोशनी का बाइस बने, और अल्लाह ताला हमें खुद को भी बहुत आसानियां दे और हम बहुत आसानियां तकसीम करें. बहुत ही खूबसूरत ये दुआ है. तो आफ्टर द ब्रेक हम प्रोग्राम को समेटेंगे और कुछ जिक्र करूँगी कुछ जगहों का, बहुत ही खूबसूरत है, और फिर साथ ये म्यूज़िक और जो मेरे ख्याल में मैंने जिसे गोल्डन वर्ल्ड तो नहीं है, ये गोल्डन वर्ड्स है. तो गोल्डन वर्ड्स जो मैंने अभी मेरे ख्याल में, मैंने अपने लिए नहीं कहा, ये सेल्फ गोल्डन वर्ड्स है कि इन चीज़ों से पाक होना, बोग्ज हसद दुश्मनी अनाद से अपने आप को पाक करना, अल्लाह के नूर के लिए अपने सीने को खुला रखना, ओपन रखना. दीज आर द गोल्डन वर्ड्स कि मैं खुद से नहीं कह रही हूं, मैं इन अल्फाज को अप्रिशिएट कर रही हूं. जी बिल्कुल सामईन इकराम, ये एक ब्रेक का टाइम है और आफ्टर द ब्रेक हमने जो है अपने प्रोग्राम के इख्तिताम में चीदा चीदा नुकात को फिर उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करनी है. थैंक यू.
1: The winner is,
2: and the winner is,
3: and the winner is
1: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर. होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले. बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से. बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL. बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका.
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं.
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL.
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644.
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर.
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए.
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान.
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442.
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स. अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ.
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है.
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी. नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ.
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014. सोफी ज्वेलर्स. ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
7: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
10: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट की स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horson Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

जी सामईन इकराम, आप सबका प्रोग्राम को पसंद करने का, स्पेशली पाकिस्तान से हमें जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन सब की पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। हम ब्रॉडफॉरेशन रेडियो 1413 AM के चैनल पर जो आपसे इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, टॉपिक भी जो है और इससे रिलेटेड जितनी बातें हुई, तो इन सबको पसंद किए जाने का बहुत शुक्रिया। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है। कबल इसके कि हम आपको ऐसी खूबसूरत जगहों की सैर करवाएं, और जिसे कहते हैं ना कि बैठे बिठाए हम अपनी तखय्युलाती वर्ल्ड को वहां पे ले जाएं, और यकीन करें कि दिल वाकई मन जो है वो झूम झूम जाने को दिल करेगा। और उससे पहले मेरे पास एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है और इसके लिरिक्स इसका इसके वाओ इट्स अमेजिंग। चले आए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग से, ज़रा थोड़ा सा महसूस होते हैं, और फिर प्रोग्राम के एंड में हम उन खूबसूरत जगहों की सैर भी करेंगे। चले आए खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं।

जी सामाई ने कराम, ब्रेफरेशन रेडियो 1430 AM पर देख रही हूँ कि हमारा प्रोग्राम का इख्तितामी ये मंजर जो है, इख्तितामी मरहला है। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम ने अब आपको अल्लाह हाफिज कहना है जी। हमारी वेबसाइट broadforationradio.co.uk है और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677।

तेजी से जगमगाती है तो यूं लगता है कि जैसे आसमान के तारे उतरकर इसकी छत पर आ गए हो। और ये मस्जिद न सिर्फ इबादत की जगह है बल्कि मिस्र की और इस्लामी आर्किटेक्चर की मिसाल भी है। यहाँ ये भी जानना जरूरी होगा कि ये मस्जिद वहां के इस्लामी कल्चर में अपना नुमाया रोल जो है वो अदा करती है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास मस्जिद है वो राया अल जबर है, और ये मस्जिद जो है ये इंडोनेशिया में है। ये मॉडर्न डिजाइन की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक मस्जिद है जो कि इंडोनेशिया में है। इसे फ्लोटिंग मास्क यानी तैरती हुई मस्जिद भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी से घिरी हुई है, इसके आसपास जो है वो पानी रहता है। सूरज की रोशनी जब इसके गुंबद पर पड़ती है तो पूरा नजारा जो है वो एक जन्नत के नजारे जैसा लगता है। और वीडियो भी आप खोल के देखें कि आप खुद से भी ये देख सकते हैं। दुनिया की ये सबसे छह यू खूबसूरत मसाजिद है, जाएं और खोल के देखें, वाकई इनके खूबसूरत मनाजर जो है ना वो आंखों को ठंडक देते हैं। और यही इंडोनेशिया की मस्जिद है। यहाँ का माहौल इतना सुकून भरा है, आप देखिए कि ग्रीन कलर से इसको टच दिया गया है कि यहाँ पर आने वाला जो हर एक शख्स है वो इसकी खूबसूरती और रानाई में खो जाता है कि हर आने वाला इंसान यहाँ पर दिल से कह उठता है कि यही सुकून है, अब जहां से कहीं नहीं जाना, अब यहां से कहीं नहीं जाना। जो इंडोनेशिया में जो मस्जिद है ये इतनी ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत है। और इसके बाद जी तीसरे नंबर पर हमारे पास जो मस्जिद, ये देखें, अब मैंने सोचा था कि आपको जब इन मसाजिद के बारे में बयान करूंगी तो मैंने मस्जिद नबवी शरीफ को पहले नंबर पर रखना है, लेकिन वो बस वही गलती हुई कि इधर मैं प्रोग्राम में भी लगी हुई, तो बल्कि ये ऐसे कहते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ जो है दुनिया की बेहतरीन, सबसे ब्यूटीफुल, दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन मस्जिद जो है ये पहले नंबर पर आती है, जो कि मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ जो है मदीना शरीफ में है। हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। उनका रोज़ा अनवर है यहाँ पर, वो अपने गुम्बद खजरा में जिंदा, और वो आखिरी नबी अल्लाह पाक के खत्मी मर्तबत है। और हर मुसलमान की दिल की गहराइयों से ये तमन्ना है कि हम मस्जिद नबवी शरीफ का जिंदगी में एक बार जो है वो जरूर यहाँ पे हाजिरी दें। रोज़ा अकदस पर हाजिरी देने का शर्फ हर मुसलमान की पहली और अव्वलीन ख्वाहिश है। और यहाँ पर जितना पुरसकून माहौल है वो दुनिया में और कहीं भी जो है माहौल नहीं मिलता। हर आंख जो है वो यहाँ पे इस नज़ारे को, मस्जिद नबवी शरीफ की खूबसूरतियों से महजूज होने के लिए हर मुसलमान के दिल की एक तड़प है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो अनवारों तजल्लियात हैं, नूर की बारिशें जो होती हैं उमड़ती हैं, नूर के फवारे बरसते हैं, वो मस्जिद नबवी शरीफ है। जी चौथे नंबर पर जो मस्जिद है ये एंटार्क्टिका महासागर के किनारे बनी हुई है, और ये मस्जिद जो है दुनिया के सबसे ऊंचे मीनारों में जो है वो इसके मीनार जो है वो शुमार किए जाते हैं। और इसके इर्द गिर्द भी पानी है और हरियाली है, और ये मस्जिद जो है जैसे
समंदर का जो है वो नजारा, एक खूबसूरत नजारा जो है वो आंखों से यहां से देखा जा सकता है। सूरज ढलते वक्त ये मस्जिद सोने जैसे चमकती हुई लगती है जी। पांचवे नंबर पर जो है शेख जायद मस्जिद अबू धाबी में है जी, ये पांचवे नंबर पर मस्जिद। और आपको पता है अबू धाबी जो है वो कितना ब्यूटीफुल इटसेल्फ वो जगह है, और ये संगे मरमर से बनी हुई इस दुनिया की सबसे जैसे खूबसूरत मस्जिदों में शुमार होती है। संगे मरमर से बनी हुई है और बहुत ही दिलकश नक्काशी है, और इसके ऊपर गुंबद जो है वो सफेद कलर के जो गुंबद बने हुए हैं, ये रात को जब रोशनी से जगमगाती है तो आंखों को हीरा करती है और बहुत आंखों को दिलो दिमाग को ठंडक पहुंचाती है। तो वही जब रात के वक्त ये मस्जिद के मीनारे जो हैं वो चमकते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे चांदनी जो है वाइट कलर के जो है ये मीनार चमकते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई है। और छठे नंबर पर सुल्तान अहमद मस्जिद जो है ये तुर्की में है, और इस मस्जिद को ब्लू मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका पूरा रंग जो है वो ब्लू कलर का है, और फिर इसके अंदर दीवारों पर जो है वो नीले रंग की जो है वो टाइल्स लगी हुई हैं, और ये मस्जिद भी जो है देखने में बेहद शानदार लगती है। और जब यहां से अजान की आवाज गूंजती है तो पूरा जो शहर है वो ईमान की रोशनी से जगमगा उठता है और मोहब्बत की रोशनी में जैसे कि नहा गया हो। तो मज़े सामीन इकराम, हमने मैंने ये कोशिश की कि हम जो है मस्जिद, जो दुनिया की छह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है उनको बैठे बैठे हम उनका जो है वो सफर तय कर लें। और जिस भी मैंने मस्जिद का जिक्र किया है, स्पेशलिटी वहाँ की यही है कि वहाँ पे सुकून बहुत है, और जो मस्जिद नबवी शरीफ में सुकून है वहाँ से हर आने वाला जायर जो है वो यही कहता है कि वो वहाँ पे जाके अल्लाह करीम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम सब की हाजिरी भी वहाँ पे, मेरे समेत हम सब की हाजिरी वहाँ पे कबूल व मंजूर अता फरमाए, बाद अब हाजिरी का शरफ दे अपने घर का और मस्जिद नबी शरीफ का, आमीन। तो ये मौजूद सामीन इकराम इतनी खूबसूरत मैं कहती हूँ कि है ये मसाजिद के हम जो इर्द गिर्द इधर उधर सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे न सिर्फ वहाँ आर्ट का बेहतरीन नमूना जो है देखने को मिलता है, और मस्जिद नबी शरीफ में तो वैसे भी वो नूर की जब ऐसे छींटे अल्लाह ताला भेजता है, नूर के फव्वारे जिसे कहते हैं, तो वो फिर गुंबदे खजरा पर पड़ते हैं तो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से देखते हैं। इससे बढ़ के और इंसान का मुकद्दर कैसे चमकेगा। बहुत ही खूबसूरत हमने इस वक्त जो है वो अपना सफर भी तय कर लिया, और यकीन करें कि तबीयत इतनी वो जिसे कहते हैं हशाश बशाश जिसे कहते हैं हो गई है, हल्की फुल्की सी हो गई है, और यूं महसूस होता है कि गोया कि हम खुद वहां पे, स्पेशली देखिए वहां पे जो समंदर के नजारे हैं, सतह समंदर जो होती है, और कुछ मसाजिद का जिक्र किया कि पानी उनके इर्द गिर्द जो है वो तैर रहा है, और वो यूं लगता है कि जैसे वो पानी अपनी और ज्यादा दिलकशी जो है बढ़ा रहा है मस्जिदों की। तो बिल्कुल आप मिस्र में अबू धाबी और इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया भी कहते हैं, तो इंडोनेशिया इस तरह से हम जब जाते हैं इन कंट्रीज में तो जरूर वहां पे जाके हम अपनी हॉलीडेज जो है एंजॉय कर सकते हैं जी। मौजूद सामीन इकराम,
उम्मीद करती हूँ आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और जो हमें फीडबैक आई उसका भी बहुत शुक्रिया. और यही बात होती है कि देखा बात भी बन गई, काम भी हो गया और फिर काम को लटकाने का मकसद भी खत्म हो गया. और खुद को जब हम बिल्कुल एनर्जेटिक फील करते हैं तो फिर काम को हाथ डालेंगे, तो फिर वो हम लटका लटका के काम नहीं करेंगे बल्कि वन गो में जो है वो काम जो है हमारा हो जाएगा. तो यही बात होती है कि समझदारी से अकलमंदी से काम होते हैं. वही बात आ गई कि अकल बड़ी के भैंस. तो वो बहुत से लोगों का इसके बारे में डिफरेंट जवाब है, वो भी आप खुद से भी ये सवाल किसी से करके देखिएगा, फिर सुनिएगा डिफरेंट लोगों की डिफरेंट आरा किस सिलसिले में होती है. जी सामीन इकराम, अब मेरे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हुआ जाता है. आपसे इजाजत लेने से पहले बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा और मौसम को एंजॉय करते हुए बस ये रखना है कि अपने आप को शांत रखें, पुरसकून रखें और जो भी हमारे काम काज है वो इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से हम सब करते रहें. आपके साथ प्रोग्राम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी खुद की भी तबीयत बड़ी हल्की फुल्की हो गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और आप सबकी फीडबैक भी बहुत अच्छी लगी, आपके कॉमेंट्स अच्छे लगे और जो भी सिलेक्शन हुई इसमें म्यूजिक वगैरह की भी वो भी आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया. तो इस वक्त मुझे आयशा अख्तर को इजाजत इस सॉन्ग के साथ, एक और ये खूबसूरत सा सॉन्ग आपके लिए आपकी नजर करती हूँ. और मुझे नेक्स्ट और इंशाल्लाह फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और इंशाल्लाह वो भी बहुत ही खूबसूरत हम प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह करेंगे. तो जी बिल्कुल हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज. ये जो नगमा है आपके लिए मैं अपनी तरफ से आपको पेश करती हूँ.

0: Beautiful Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
9: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
12: You're listening to Bradford Asian Radio
13: 1413 AM and online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
12: You're listening to Bradford Asian Radio,
3: 1413 AM and online.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: Lightful Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95BR 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
13: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
12: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है, कुछ ऐसी बात मुहर्रम का चांद कहता है कि साल भर मेरा दिल करबला में रहता है। काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, काफला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीराज थी कौसर उन्हें पानी न मिला। हर साल की तरह इस साल भी एहतराम मुहर्रम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खसूसी प्रोग्राम पेश करेगा। सोजो सलाम और मरसिए का खसूसी प्रोग्राम 2 से 5 बजे रिफत अब्बास पेश करेंगे। मनकबत, सोजो सलाम और लाइव मजालिस भी पेश की जाएंगी। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी, कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, तेरे निसार के गुल करके अपने घर के चराग, हुसैन दी है जमाने को रोशनी तूने, बहुत करीब से देखा है मैंने सब्र खलील, मगर हुसैन तेरे सब्र का जवाब नहीं।

0: Old Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपर ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं नोटरीज भी अकाउंटेंट्स। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम, मैं नोटरीज भी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं नोटरीज भी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। मैं नोटरीज भी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453। मैं नोटरीज भी।
13: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर। यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में हमें सुन रहे हैं, हम उन्हें दिल की गहराइयों से आज की इस खूबसूरत महफिल, गजल उसने छेड़ी की जीनत और आराइश में इजाफा करने के लिए तशरीफ लाएंगे तो खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274 30 66 77।

जैसा कि आप जानते हैं, मेरी आमद के साथ ही मेरे मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, जो हो चुका है। मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, कौन कौन अहबाब हमारे हमराह मौजूद हैं इनका जिक्र खैर होगा। लेकिन हाँ, हस्ब रिवायत हमेशा की तरह आगाज करेंगे आज के गजल उसने छेड़ी का एक हसीन गीत के तोहफे से, जिसे हम करते हैं अपने उन तमाम सामीन और नाजरीन के नाम कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है, इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा करती है, और साथ ही साथ अपने उन नादीदा लिसनर्स के नाम सोते मुजाहिदों के नाम किया करते हैं जो ऑनलाइन दुनिया के चार कोनों में हमारी बज़्म में शामिल होते हैं। तो आइए आगाज करते हैं गजल उसने छेड़ी का। इससे पहले जिक्र कर दूं मौसम के अहवाल का। सुबह से मौसम अब राडूद है, टेम्परेचर अभी 21 सेंटीग्रेड है या सेल्सियस है कह लीजिए, और इंशाल्लाह 23 सेल्सियस तक जाने का इम्कान मौजूद है। मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आप सुनाइए आपके यहाँ मौसम कैसा है, आपके दिलों का मौसम कैसा है, मुझे ज़रूर बताइएगा आपके शहर का मौसम कैसा है। आइए आगाज करते हैं अपने उन तमाम मोहब्बत करने वाले, चाहत रखने वाले और प्यार करने वाले सामईन और नाजरीन के नाम और नादीदा लिसनर सोते मुजाहिदों के नाम इस खूबसूरत गीत से, आपकी मोहब्बत हो, चाहत हो और प्यार के नाम।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर? रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
5: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। अब वक्त हुआ है अपने मेहमानान गिरामी को बज़्म में शामिल करने का। तशरीफ लाए हैं हरिसवील की हसीन फ़ज़ाओं से जनाब रियासत साहब, मौजूद हैं वेकफील्ड से हमारे शहजादे वक़ार मियां, हमारे मोहतरम लिसनर रियाज साहब ब्रेडफोर्ड की हसीन वादी से, सुमेरा बिटिया ब्रेडफोर्ड 3 से जिन्हें हम बावची खाने की रानी कहते हैं, भगत सिंह साहब हमारे हमराह मौजूद हैं लीड से, नजीर अहमद साहब लिया पंजाब पाकिस्तान से तशरीफ ला चुके हैं, रफाकत साहब एडमबरा से हमारे हमराह मौजूद हैं, और बहुत दिनों की तवील गैर हाजिरी के बाद हमारी बहुत ही प्यारी सी बिटिया हफ्सा नफीस इस्लामाबाद पाकिस्तान से हमारी बज़्म में शामिल हुई हैं। हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से और तमाम अहबाब को जिनके इस्माए ग्रामी हमने लिए हैं खुश आमदीद कहते हैं। बहुत खुशी होती है जब हमारे खोए हुए लिसनर अचानक नमूदार हो जाएं, जैसा कि आज हफ्सा नफीस ने और उनकी आमद ने हमें चौंका दिया है। किस कदर खुशी का एहसास होता है उसको आप तक पहुंचाने के लिए मेरे पास अल्फाज मौजूद नहीं हैं। जिन अहबाब के इस्माए ग्रामी मैंने लिए हैं, इन तमाम अहबाब ने आप तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में मोहब्बत और अकीदत से लबरेज सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है। अब हम आपको लिए चल रहे हैं हडिसफील की हसीन वादी में, पहाड़ों से घिरा ये खूबसूरत शहर और इसके मकी रियासत साहब और उनके अहल खाना, जो तशरीफ लाकर आगाज प्रोग्राम में ही हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर में इजाफा करते हैं। उनका तोहफा लेकर हाजिर हैं। आप सब जानते हैं कि रियासत साहब दीवाने हैं, शैदाई हैं, खान साहब मेहंदी हसन खान साहब मरहूम के। आज भी उन्होंने खान साहब मेहंदी हसन खान साहब का एक ऐसा हसीन गीत मुंतखब किया है जो आपको भी दीवाना बना देगा। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ दिल की गहराइयों से रियासत साहब और उनके अहल खाना का कि उनकी आमद हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाती है। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ। इसके बाद हम चलेंगे आपको लेकर मिडिल्सब्रा, जहाँ मौजूद हैं हमारी बावची खाने की रानी प्यारी सी बिटिया सुमेरा ब्रेडफोर्ड 3 की कजन्स, ज़्यादा नहीं है भाई, नज़र ना लगे, सिर्फ 14। उन सब के नाम वो तोहफा पेश करेंगे जो आज सुमेरा बिटिया लाई हैं। लेकिन अभी चल रहे हैं हम ये अपने हडिसफील की हसीन फ़ज़ाओं में। रियासत भाई, آپ کا آپ کے اہل خانہ کا بے انتہا شکریہ اور سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیروں دعائیں۔

और दोस्तों महफिल सज चुकी है, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। इससे पहले कि हम आपको इस्लामाबाद में अपनी प्यारी सी बिटिया हफ्सा नफीस की पसंद की जानिब लेकर चलें, हमने वादा किया है एक और प्यारी सी बिटिया सुमेरा बेडफुट 3 से कि हम आपकी वो चंद कजन, सिर्फ 14 कजन, अल्लाह नजर बद से बचाए, टच वुड, हाँ, तो उनकी नजर हम वो तोहफा पेश करने जा रहे हैं जो हमारी बावर्ची खाने की रानी प्यारी सी बिटिया सुमेरा ब्रैडफुट 3 ने। आज भी वो कह रही हैं कि अंकल, हमेशा की तरह मैं आपके 3 घंटे का प्रोग्राम सुनकर सारे दिन की कुकिंग से फारिग हो जाती हूँ, और ये बड़ी खुशी की बात है, एक आपके पास एक ऐसा मौका मौजूद है जिसमें आप इंजॉय भी करती हैं और मेहनत भी करती हैं, और मेहनत करने वालों की हम बहुत कदर करते हैं। बस उनसे नाला जब होते हैं जब वो डिशों के नाम बताती हैं। आज भी वो बताने की कोशिश कर रही थी, इसलिए कि भाई आप तो किचन में हो, मैं हूँ स्टूडियो में, जब आप अच्छी अच्छी डिशेस के नाम बताती हैं तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है, बताइएगा नहीं किसी को, तो मैं उसे अवॉइड करता हूँ। आखिर 5 बजे तक साथ भी तो निभाना है। तो चलो सुमेरा बिटिया, तुम्हारी तरफ से तुम्हारी प्यारी प्यारी कजन्स के नाम हम वो गीत जो तुमने उनके नाम किया है वो लेकर हाजिर हैं। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी कजन्स को सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और तुम्हारी ये मेल और मोहब्बत यूं ही कायम हो

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूँ रिफत अब्बास। मैं भी इंतहा शुक्रगुजार हूँ कि जो हमने नया सेगमेंट शुरू किया है जिसका आगाज कल किया था, एक शायर और दो आवाजें एक गीत। आज इसमें हम अपने मोहतरम लिसनर जनाब शकील साहब की पसंद के गीत को शामिल कर रहे हैं। बेइंतहा शुक्रिया शकील साहब का निशानदही करने पर, बाकी काम तो हम कर ही लेंगे। सो एक गीत दो आवाजें एक शायर, 3 बजे के कमर्शियल के बाद होगा, लेकिन अभी हम चल रहे हैं इस्लामाबाद की हसीन वादी में, जहां शर्मा शर्मा के बता रही हैं हमारी प्यारी सी बिटिया हफ्सा नफीस कि आज इस्लामाबाद का मौसम बहुत खूबसूरत है और भी खूबसूरत हो गया है, ये भी मेरे साथ हैं। ये वो ये क्या, मुझे जॉन एलिया का कता याद आ रहा है, रियायत लफ्जी से मैं फायदा उठाऊंगा कि शर्म दहशत झिझक परेशानी, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी ये, मगर ये सब क्या, तुम अशद का नाम क्यों नहीं लेती, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी ये, मगर ये सब क्या, तुम अशद का नाम क्यों नहीं लेती। अब वक्त आगे बढ़ गया है, फख्र के साथ उसका नाम लो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे, इज्जत-ओ-मान में रखे, नजरे बद से बचाए, कामयाबियां और कामरानियां तुम्हारा मुकद्दर बने। हमारी ढेरी दुआओं और प्यार के साथ तुम्हारा तोहफा लेकर हाजिर है, कबूल करो। जीती रहो मेरा बेटा अफसा नफीस, बहुत दिल खुश हुआ तुम्हारी आमद से। प्रोग्राम को 4 चांद लग गए हैं।

0: memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping, featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
2: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
2: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
2: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
2: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो,
9: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
10: अब इस वक्त हुआ है हमारे नए सेगमेंट एक शायर एक गीत दो आवाजें का। आज जो गीत हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसका इंतखाब किया है हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर बनले से जनाबे शकील साहब ने। 1930 में एक बच्चा पैदा हुआ रावलपिंडी, ये उस जमाने में हिंदोपाक एक ही था पंजाब में कह लीजिए, और उस बच्चे के जहन में बचपन से ये था कि मैं शायर बनूंगा, गुलोकार बनूंगा, और ये सपना लिए वो बच्चा जिसका नाम प्रकाश वेद था मुंबई आ गया या बॉम्बे आ गया, और कोशिशें जारी कर दी उसने। जहन में बस ये था कि बड़ा गुलकार बनना है या बड़ा शायर बनना है, और फिर उसकी मेहनत रंग लाई और दुनिया ने उसे आनंद बख्शी के नाम से, कलमी नाम आनंद बख्शी के नाम से पहचाना। ये वही आनंद बख्शी हैं जिन्होंने 6,000 से ज्यादा गीत लिखे, ये वही आनंद बख्शी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बेइंतहा खूबसूरत आवाज से भी नवाजा था, और कलाम ऐसा कहते थे कि लोगों के दिलों में उतर जाए। आनंद बख्शी ने आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाना शुरू किए मुंबई में या बॉम्बे में, और फिर शोहरत की उन बुलंदियों पर पहुंचे कि जिसकी कोई तवक्का ही कर सकता है। आनंद बख्शी न सिर्फ खूबसूरत आवाज लेकिन खूबसूरत जहन और नादिर सोच के भी हामिल थे। उनके गीतों ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े, और ये वाहिद शायर थे जिन्हें बैक वक्त 1978, 1981, 1995 और 1999 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े मौसीकी के अवार्ड से, जिसे फिल्म फेयर अवार्ड कहते हैं, नवाजा गया। आनंद बख्शी में बहुत एतमाद था, वो अशआर इस तरह कहते थे कि आम फहम हो, सादा हो और लोगों के दिलों में उतर जाएं। आनंद बख्शी 30 मार्च 2002 को बॉम्बे में हमारा साथ छोड़ गए, लेकिन एक गीतों का ऐसा खजीना छोड़ गए, 6,000 गीत जिन्हें 300 से ज़ायद फिल्मों में पिक्चराइज किया गया, और उनका हर गीत मकबूलियत और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा। 71 ईयर्स, मैं इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूं कि लोग समझ जाएं, 71 ईयर्स जब आपकी एज थी तो आप दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए और गुर्दों की तकलीफ हो गई, और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 मार्च 2002 को ये खूबसूरत शायर, हसीन आवाज का मालिक आनंद बख्शी हमें छोड़कर रवाना हो गया। आज जो गीत शकील साहब ने मुंतखब किया था वो आनंद बख्शी का ही गीत है, और ये बात है 1961 की, जब एक फिल्म आई जिसका नाम था जब जब फूल खिले। यूं तो उस फिल्म के तमाम ही गीत बहुत मकबूल हुए, लेकिन एक गीत सदाबहार गीतों में शामिल हुआ और अमर गीत कहलाया, और उसके बोल तहरीर किए थे आनंद बख्शी ने। आनंद बख्शी की एक अजीब बात थी, उन्होंने जिंदगी में कभी हवाई सफर नहीं किया, वो हवाई जहाज के सफर से इस कदर घबराते थे कि उनकी तमाम उम्र हिंदुस्तान में ही गुजरी, वहीं उन्होंने मुशायरे पढ़े और दावतों का तांता बंधा था, दुनिया की चाहत कोनों से क्या नहीं बख्शी, तशरीफ लाएं, हम टिकट भेजते हैं, हम आपका रिहाइश का बंदोबस्त करेंगे, ये उस जमाने की बात है। लेकिन आनंद बख्शी साफ मना कर देते थे और कह देते थे कि नहीं साहब, मुझे हवाई जहाज के सफर से डर लगता है। 2002 में हवाई जहाज के सफर से डरने वाला ये खूबसूरत शायर, जिसने हिंदुस्तान की 300 फिल्मों को 6000 नगमात से नवाजा, इस दुनिया से रुखसत हुआ। सुरगबाशी आनंद बख्शी आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन हाँ, उनके वो गीत आज भी हमारे दिलों की धड़कन है। तो आइए, उनका तहरीर करदा एक ऐसा अमर गीत आज हमने शामिल किया है, जिसकी निशानदही शकील अहमद साहब ने की थी। पेश करते हैं एक शायर एक गीत दो आवाजें, आनंद बख्शी का ये गीत, जब जब फूल खिले में 1961 में शशि कपूर और नंदा पर फिल्माया गया था, और इसने मकबूलियत शोहरत के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़े, अमर गीतों में शामिल हुआ, और आज भी इस गीत को लोग उसी मोहब्बत प्यार और चाहत से सुनते हैं। गीत के बोल हैं, परदेसियों से नाखियां मिलाना। नगमा सरा हैं मोहम्मद रफ़ी।

0: दोस्तों, ने आपको बताया था, आनंद बख्शी ने 6000 से ज्यादा गीत लिखे और ये गीत मकबूलियत और शोहरत की तमाम तर बुलंदियों पर पहुंचे। मैं अगर जिक्र करूं,
1: सुर में गाना सीखिए पाधानी साहब के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगा।
0: ये मैं वो देखना चाह रहा हूं।

दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आनंद बख्शी ने बे इंतहा मकबूल गीत लिखे, जिनमें भीगी भीगी रातों में, ये शाम मस्तानी, सात समंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इसके अलावा बड़े अच्छे लगते हैं जुम्मा चुम्मा दे दे, मैं शायर तो नहीं, चिट्ठी न कोई संदेश, अरे जाने कैसे कब कहां और क्यों, दिल लफ्जों की दो लफ्जों की एक कहानी, आज मौसम बड़ा बेईमान है, ओम शांति ओम, तेरे मेरे होंठों पे गीत मितवा, छुप गए सारे नजारे और ये समा सुहाना। ये बहुत से गीत, अगर मैं गीत उनके बताना शुरू करूं तो जाहिर है 6000 गीत मैं कहां तक सुनाऊंगा। बस आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ये अजीम शायर गो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उसके इस गीत को परदेसियों से नाखियां मिलाना सुरों की देवी लता मंगेशकर ने भी गाकर मोहम्मद रफ़ी की तरह अमर कर दिया।

0: on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane, Bradford BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
8: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: और दोस्तों, अभी हमारी बज़्म में शामिल हुई है हमारी प्यारी सी बहना, ढेरों दुआओं के साथ शहनाज। आप ब्रेडफोर्ड 18 से हमारे हमराह मौजूद हैं। जीती रहो मेरी बहना, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तुम्हारा गीत हमने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। शहनाज मुझसे पूछ रही थी कि आपको गुस्सा नहीं आता कभी? मुझे आता है गुस्सा, मुझे झूठ से शदीद नफरत है, झूठ पे बड़ा गुस्सा आता है। जो लोग झूठ बोल के शर्मिंदा नहीं होते, मैं उनसे बहुत बेजार रहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बातों को मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो आप भी ख्याल रखिएगा कि झूठ बोलना और उस पर कायम रहना ये बहुत ही कमज़ोर लोगों की निशानी होती है बिटिया। सच्ची सच्ची बात, क्लियर बात करना चाहिए, उससे आदमी को जहनी सुकून रहता है, ठीक है, और मुझे गुस्सा नहीं आता। जीती रहो, तुम्हारी पसंद का गीत नोट कर लिया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आनंद बख्शी जो आज हमारे प्रोग्राम एक शायर एक गीत दो आवाज़ें के शायर थे, इन्हें गाने का बहुत शौक़ था और ये गुरुकार बनने ही बॉम्बे आए थे, और इनकी इस ख्वाहिश को 1972 में शहनाज एक बहुत अजीम मौसीकार की जोड़ी थी, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, उन्होंने आनंद बख्शी के लिखे हुए ही एक गीत को उनसे कहा कि आप ये लता जी के साथ गाकर इस गीत को अपनी आवाज दे दीजिए। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन आखिर वो राजी हो गए, क्योंकि उनकी दिल में छुपी एक आरजू पूरी हो रही थी। लेकिन वो भी नहीं जानते थे और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल भी ये नहीं जानते थे कि वो गीत एक शाहकार गीत बन जाएगा और अमर गीतों में शामिल हो जाएगा। वो गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आवाज आनंद बख्शी और लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया और सन है 1972, और मौसीकी से इसको सवारा था, जैसा कि हमने बताया, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। तो आइए वो गीत सुन देखते हैं।

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी और लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत अमर गीत। आज के सेगमेंट के लिए गीत की निशानदही करने वाले हमारे मोहतरम लिसनर शकील साहब बनफ से नफीस हमारे प्रोग्राम गजल उसने छेड़ी की इज्जत तौकीर बढ़ाने के लिए बनले से तशरीफ ला चुके हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। कैसे हैं शकील भाई?
1: जी अल्लाह की मेहरबानी शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, सब ठीक है। आप सुनाए कैसे हैं?
0: अल्लाह का बड़ा फजल करम है, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है।
1: आमीन, शुक्र है। तो पहले तमाम सुनने वालों को मैं तहे से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: खालिद सलीमी साहब है, सूफी अब्दुल करीम साहब है, रिजवान रिजवीन कियालिया है, अयूब भाई है, नवीद भाई, चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, तारिक जुल्फी है, आशमियास वाल है, हमायों परवेज साहब है, तौसीफ अहमद है, मजीद भाई, वसीम शाह, ला शफिया नकवी साहब, महबूब शाह साहब, सब को मैं तहे से अस्सलाम वालेकुम।
0: आपका मोहब्बत भरा सलाम आपके तमाम अहबाब तक पहुंचा, खुश आमदीद।
1: तो आनंद बख्शी जो है ये रावलपिंडी में पैदा हुए थे।
0: जी जी।
1: 21 जुलाई को कल जो था ना, कल जो था उनका पैदाइश का दिन था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह।
1: अच्छा, तो तकरीबन 75 साल की उम्र में वफात हुई थी।
0: जी हाँ, बॉम्बे में उनकी वफात हुई गुर्दे फेल हो जाने की वजह से।
1: गजल लाया हूँ ये कंवल जर्दी लिखने वाले।
0: अता कीजिए, बिस्मिल्लाह।
1: कहते हैं गम की हर एक बात को अब गम पे छोड़ दे,
0: गम की हर एक बात को अब गम पे छोड़ दे,
1: इस तिश्नगी को कतराए शबनम पे छोड़ दे।
0: वाह वाह वाह वाह भाई, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, अता कीजिए।
1: गम की हर एक बात को अब गम पे छोड़ दे, इस तिश्नगी को कतराए शबनम पे छोड़ दे।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया। जो तूने कर दिया है तू उसका हिसाब रख,
0: जो तूने कर दिया है तू उसका हिसाब रख,
1: जो हमसे हो गया है उसे हम पे छोड़ दे।
0: वाह वाह वाह वाह भाई, वाह वाह वाह वाह, आता कीजिए। वाह वाह वाह वाह,
1: जो तूने कर दिया है उसका हिसाब रख, जो हमसे हो गया है उसे हम पे छोड़ दे।
0: भाई वाह वाह वाह वाह,
1: तू देवता है सिर्फ इबादत से काम रख,
0: तू देवता है सिर्फ इबादत से काम रख,
1: आदम के हर गुनाह को आदम पे
0: छोड़ दे। वाह वाह वाह वाह, क्या तस्वीर है। वाह वाह वाह वाह, तू देवता है, अता कीजिए।
1: तू देवता है सिर्फ इबादत से काम

0: हाँ हाँ
1: आदम के हर गुनाह को आदम पे छोड़ दे।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: अब आने वाले वक्त का तू ख्याल रख।
0: अब आने वाले वक्त का तू ख्याल रख।
1: माजी को दौरे हाल के मातम पे छोड़
0: दे। भाई वाह वाह, क्या मुरस्सा इंतखाब है। भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तू अपने घर को तलख ये गम से बचा के रख।
0: हाँ हाँ।
1: तू अपने घर को तलखिए गम से बचा के रख। आलम की बात वाली ये आलम पे छोड़ दे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: शुक्रिया। मौसम पे मुनहसर है फसले गमे हयात।
0: मौसम पे मुनहसर है फसले गमे फसले
1: फसले गमे हयात को मौसम गमे पे हयात। छोड़ दे। तो आखिरी शेर कहते हैं
0: जी, अता कीजिए।
1: खंजर था किसके हाथ में बस इतना याद कर।
0: खंजर था किसके हाथ में बस इतना याद कर।
1: जख्मों का दर्द वक्त के मरहम पे छोड़ दे।
0: भाई वाह वाह, भाई वाह वाह वाह वाह। खंजर था किसके हाथ में, अता कीजिए।
1: खंजर था किसके हाथ में बस इतना याद कर।
0: आहा।
1: जख्मों का दर्द वक्त के मरहम पे छोड़ दे।
0: भाई वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। तो एक माहिर बलग्रामी उनकी गजल है
0: जी, अता कीजिए।
1: कहते हैं अगर ना दर्द से इस दिल को आशना करते।
0: अगर ना दर्द से इस दिल को आशना करते।
1: गमे हयात का किस तरह तजजिया करते।
0: भाई वाह वाह वाह वाह।
1: सखी के सामने फैले हुए हैं जिनके हाथ।
0: सखी के सामने फैले हुए हैं जिनके हाथ।
1: हम क्या अर्ज़े मुजहा करते।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: ये दर्द दिल तो है इस जिंदगी की तरह।
0: ये दर्द दिल तो है जिंदगी की तरह।
1: मर्द अगर कोई होता तो कुछ दवा करते।
0: दवा करते। भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। आता कीजिए।
1: ये दर्द दिल तो है जिंदगी की तरह।
0: आहा।
1: मर्द अगर कोई होता तो कुछ दवा करते।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: न होती अपने पराये की फिर हमें तमीज।
0: न होती अपने पराए की फिर हमें तमीज।
1: दगा न मिल के अगर यार आशना करते।
0: क्या बात है भाई वाह वाह वाह वाह। आता कीजिए। वाह वाह वाह वाह।
1: न होती अपने पराए की फिर हमें तमीज।
0: आहा।
1: दगा न मिल के अगर यार आशना करते।
0: भाई वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। न्याजो नाज न यूं होते लाजमो मलजूम।
0: न्याजो नाज न होते यूं लाजमो मलजूम।
1: न यूं किसी के इशारों पे हम चला करते।
0: भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। खुदा न खास्ता कश्ती जो डूबने लगती।
0: खुदा न खास्ता कश्ती जो डूबने लगती।
1: सिवा खुदा के भला क्या ये ना खुदा करते।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या तवक्कल है। अता कीजिए। अता
1: खुदा न खास्ता कश्ती जो डूबने लगती। सिवा खुदा के भला क्या ये ना
0: खुदा करते। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। अजब नहीं था कि आ जाता होश में बीमार।
0: अजब नहीं था कि आ जाता होश में बीमार।
1: गरीब आके जो दामन से वो हवा करते।
0: वाह वाह वाह। भाई क्या खूबसूरत तजवी है। गरीब आके।
1: तो आखिरी शेर कहते हैं।
0: अता कीजिए।
1: दरूने दिल की सजा है अपनी गजल माहिर।
0: आहा। दरूने दिल की सजा है अपनी गजल माहिर।
1: के शेर शेर पे सामे हैं वाह वाह करते।
0: भाई वाह वाह, सही वाह वाह करते हैं। बहुत अच्छा कहते हैं। बहुत खूबसूरत इंतखाब शकील भाई। और आपके लिए मोहब्बत भरा सलाम परदेसी मजीद साहब ने भेजा है। कहते हैं वाह वाह, क्या बात है जी।
1: ठीक है, बड़ी मेहरबानी। टाइम दे।
0: हम आपको खाली हाथ रुख्सत नहीं कर रहे। इस कदर खूबसूरत कलाम से आपने हमारे सामईन और नाज़रीन को नवाजा है। आपकी पसंदीदा गजल आपके हमराह रवाना कर रहे हैं।
1: शुक्रिया।
0: कबूल कीजिए और आमद का बहुत शुक्रिया शकील भाई।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा
0: अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, और अब हम कमर्शियल के वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं। कमर्शियल के बाद आपको खाड़ियां गुजरात पाकिस्तान दिए चलेंगे, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम परदेसी मजीद साहब, जो नमाज से फारिग होकर तशरीफ ला चुके हैं और एक गीत सुनना चाहते हैं। पहले वो कोई और गीत सुनना चाहते थे और हमने वो क्यू कर रखा था, लेकिन अब उन्होंने अपनी पसंद तब्दील कर दी है। हम वही गीत जो अब आपने तहरीर किया है आपकी नज़र करेंगे कमर्शियल के बाद। उसके बाद शहनाज बिटिया, सवाल बहुत करती हो भाई। खाने में जहाँ तक तुमने पूछा है, हम हर चीज़ खाते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम कह दें कि मैं ये नहीं खाता। जो भी मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खाते हैं। ठीक है, जीती रहो। अब हाँ, ये बता दें कि खारियां गुजरात से वापसी पर हम आपका तोहफा, जो आपने सुनना चाहा है, आपकी नजर करेंगे झूठ के हवाले से, है ना।
1: 14:13 AM
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
13: You're listening to
14: Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
15: You're listening to Bradford Asian Radio, 14:13 AM and online.
0: और दोस्तों, वक्त आ गया है हस्बे वादा। अब हम चल रहे हैं आपको लेकर खाड़ियां, गुजरात, पाकिस्तान, जहां परदेसी मजीद साहब का कहना है कि शदीद बारिश ने सर्दी का माहौल पैदा कर दिया है। मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम से लुत्फ़ंदोज़ हो रहा हूँ और कहते हैं कि कोई खूबसूरत से शेर मेरे नाम ज़रूर कर दीजिएगा। ज़रूर करते हैं। वसी शाह का एक कता है जो मेरा ख़्याल तुम्हारे ऊपर फिट भी बैठता है कि अंधेरी रात में रहते तो कितना अच्छा था, हम अपनी ज़ात में रहते तो कितना अच्छा था, दुखों ने बाँट लिया है तुम्हारे बाद हमें, तुम्हारे हाथ में रहते तो कितना अच्छा था, अंधेरी रात में रहते तो कितना अच्छा था, हम अपनी ज़ात में रहते तो कितना अच्छा था, दुखों ने बाँट लिया है तुम्हारे बाद हमें, तुम्हारे हाथ में रहते तो कितना अच्छा था। आइए चलते हैं खाड़ियां, गुजरात, पाकिस्तान। परदेसी मजीद साहब, आपकी मोहब्बत हो, चाहत हो और प्यार का बे इंतहा शुक्रिया। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूं, कबूल फरमाइए।

दोस्तों आप सुन रहे थे मजीद परदेसी साहब की पसंद, आवाज़ खान साहब मेहंदी हसन खान साहब की थी। बहुत खूबसूरत इंतखाब आपका, जितनी दाद दी जाए कम है। अब हम चल रहे हैं अपनी प्यारी सी बहना शहनाज ब्रेडफुट 18 में मौजूद हैं। कहती हैं, भैया मैं आपका प्रोग्राम सुनकर अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर लेती हूँ। आज भी जो गीत मैंने पसंद किया है, जिसके हवाले से आपको मेरा सवाल करना बुरा लगता है। नहीं नहीं नहीं, बुरा नहीं लगता, मैंने तो मैं सच्चा जवाब दे देता हूँ। आपने पूछा था कि मेरे गीत के, आपने जो गीत मुंतख किया है उसके हवाले से आपने कहा था आपको बुरा क्या लगता है, तो मैंने आपको सच सच बता दिया था कि मुझे झूठ से शदीद नफरत है। साफ साफ क्लियर बात होनी चाहिए और खामखा ज़रूरत ही नहीं है झूठ बोलने की, जो बात है वो होनी चाहिए। और रही बात बचपन की यादों की, तो मुझे भी आपके उस गीत से और आपके इस सवाल से एक याद आ गई। वो ये थी कि हमारे प्राइमरी स्कूल की जो बुक्स थी उसमें एक कहानी थी कराची में जो पढ़ाई जाती थी, झूठों पर खुदा की लानत। और उसमें ये था कि एक बच्चा था जो गांव में रहता था, वहाँ से ट्रेन गुजरा करती थी और जंगल सा था, तो वो वहाँ जाके उसने एक दिन शोर मचाया, शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया। लोग पहुँचे बचाने को तो देखा कि हंस रहा है, कह रहा मैंने तो ऐसे ही कहा था। फिर दूसरी गांव के करीब वो गया जहाँ से वो ट्रेन गुजरती थी, ट्रेन लाइन के पास खड़ा हो गया और शोर मचाने लगा, शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया। उस गांव के लोग पहुंचे तो देखा कोई शेर वेर वहां नहीं है, कहने मैं तो मजाक कर रहा था। और दोस्तों एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, कि वो अपने गांव के पास ही खड़ा था ट्रेन का, उसे जो बहुत अच्छा लगता था जब ट्रेन गुजरती थी, और अचानक उसकी निगाह पड़ी वाकई शेर आ गया था। उसने बहुत शोर मचाया, शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया, मुझे बचाओ शेर आ गया। जो भी उसकी आवाज़ सुनता था कहता था, अरे ये पहले भी दो बार ये हरकत कर चुका, कोई शेर वेर यहाँ जंगल में शेर कहाँ। और देखिए खुदा की कुदरत कि उस दिन वाकई शेर आ गया था और शेर ने उस झूठे लड़के को अपना निवाला बना लिया। तो दोस्तों झूठ से गुरेज कीजिए कि एक झूठ को निभाने के लिए 70 झूठ साथ बोलना पड़ते हैं। तो अगर आप इस आदत बद में मुब्तला हैं, इस पर अल्लाह ताला ने भी लानत भेजी है झूठों पर, तो इससे निजात हासिल करें। सीधी सच्ची और साफ बात कहने का अपने अंदर हुनर पैदा कीजिए। अगर गलती हो गई है तो उसका इतराफ़ कर लीजिए, उसमें कोई इज्जत आपकी परदेसी मजीद उस कहानी का नाम था झूठों पर खुदा की लानत। तो बड़ी सबक आमोज कहानियाँ कोर्स में शामिल की जाती थी। और वो दिन है, आज का दिन है कि मुझे झूठ से शदीद नफरत है। हाँ, दूसरी बात ये कि शहनाज आपने कहा कि आपको बचपन की एक हसीन याद स्टूडेंट की बिरयानी याद आती है, बिल्कुल आपको नहीं मुझे भी बहुत याद आती है। जेट लाइन में स्टूडेंट की बिरयानी खाने के लिए मैं खल हर 2 मिनट के बाद एक देग वहाँ खुलती थी। आप तो नहीं गई होंगी लेने कभी, आप तो भाइयों वगैरह से या वाले साहब जाते होंगे, हम जाते थे तो वो स्टूडेंट की बिरयानी के लिए बाहर लाइन लगी होती, जब आपका नंबर आता था तो प्लेट आपको मिल जाती थी। और मैंने वहाँ खड़े होकर देखा कि हर 2 मिनट के बाद देग खुलती है वहाँ बिरयानी की। तो ये याद भी आपकी बड़ी यादगार, आप ही की नहीं मेरी भी, मैं भी स्टूडेंट की बिरयानी बहुत मिस करता हूँ। और ये अब तो बहुत खूबसूरत इलाका बन गया है, जेट लाइन में कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर इसका आगाज़ किया था और आज तक वो बिरयानी बे इंतहा मशहूर है। और लोग बड़े फख्रिया बताते हैं कि हम कराची गए थे और हमने स्टूडेंट की बिरयानी खाई।
जो गीत परदेसी मजी साहब आपने सुना था, ये गीत मेरे कज़न थे जो खोखरा पार कराची में रहते थे, सैयद हसन उनका नाम था, उन्हें अल्लाह ताला ने बे इंतहा खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था। वो ये गीत गाया करते थे, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। लेकिन अब चलते हैं शहनाज, जिस दुआ की तुम मंतज़िर हो वो तुम्हें दे देते हैं। अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, सेहत से रखे, बच्चों की बहारें दिखाए। तुम्हारा तोहफा लेकर हाजिर हैं, कबूल करो। एक सेकंड।

0: और दोस्तों परदेसी मजीद साहब ने खारिया गुजरात लिखा है, उन्होंने कहते हैं कि मैंने भी ये कहानी पढ़ी है, लेकिन हमारे यहाँ इस कहानी का नाम था झूठ की सजा। हो सकता है बिल्कुल पढ़ी होगी आपने, बहरहाल कहानी सबक आमोज है। मैके की बात हो रही थी, 99.9% मर्द अपनी बेगम के मैके जाने पर बे इंतहा खुशी का इजहार करते हैं, कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज़ादी के कुछ लम्हे कुछ दिन तो मैसर आए। क्या आप भी उन्हीं में से हैं? सोच के बताइए। अभी तो हम आपको लिए चल रहे हैं स्वीडन, जहां मौजूद हैं हमारे खूबसूरत अदब नवाज शख्सियत, अदब से गहरा ताल्लुक उनका, शेर के मतवाले जनाब नवी साहब स्वीडन चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु रिफत अब्बास भाई,
0: कैसे हैं मेरे भाई? खैरियत से हैं
1: जी, शुक्र करम अल्लाह पाक का, आपकी दुआ। आप सुनाइए, सब खैरियत है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, जितना शुक्र अदा करूँ कम है।
1: शुक्र चाहिए जी। बहुत प्यार भरा सलाम मेरा शकील भाई को, मजीद भाई को, चौधरी रुखसार साहब को, महबूब इलाही भाई को, तमाम बहन भाइयों को मेरा सलाम।
0: बिल्कुल, आपको सलाम पहुंचा।
1: झूठ की बात निकली तो इस पे गीत था ना एक, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: ये लगता है मुकेश का गाया हुआ।
0: हाँ, मुकेश का है ये गीत।
1: तो आज आपने आनंद बख्शी साहब का भी जिक्र किया, क्या बात है, उनके भी गीत एक से एक बढ़ के मेरे जेहन में। पहला गीत आया मौसम की नस्बत से, किशोर कुमार का गाया हुआ, मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा।
0: वाह वाह वाह।
1: तो एक उनका गीत नुमा गजल है जो कि मेरा ख्याल ये भी मुकेश ने गाई हुई है कि आया है मुझे फिर याद वो जालिम,
0: गुजरा जमाना बचपन का, आह बहुत खूबसूरत,
1: आए अकेले छोड़ के जाना और ना आना
0: बचपन का। उन्हीं का है बेशक
1: जी, वो खेल वो साथी वो झूले, वो दौड़ के कहना आज छूले
0: छूले,
1: हम आज तक भी ना भूले वो ख्वाब सुहाना बचपन का।
0: हाँ, हम आज तक भी नहीं भूले वो ख्वाब,
1: और सबको पहचान नहीं, ये दो दिन का मेहमान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं, ये प्यार भुलाना बचपन का,
0: बचपन का,
1: मिलकर रोए फरियाद करें, उन बीते दिनों को याद करें, ऐ काश कहीं मिल जाए कोई जो मीत पुराना
0: बचपन का। वाह वाह वाह वाह।
1: तो उस नस्बत से मैंने सोचा आपकी अर्ज करूँ, और चंद अशार उमैर नजमी साहब के जी,
0: उमैर नजमी, अच्छा
1: ये भी जरा मुख्तलिफ ख्याल है कि बस एक इस इसी पे तो पूरी तरह आया हूँ मैं, बस एक उसी पे तो पूरी तरह आया हूँ मैं, वो कह रहा है मुझे रायगा तो हाँ हूँ मैं,
0: हाँ हूँ मैं। वाह वाह भाई, वाह वाह, अच्छा कीजिए मतलब,
1: बस एक उसी पे तो पूरी तरह आया हूँ मैं, वो कह रहा है मुझे रायगा तो हाँ हूँ मैं, जिसे दिखाई दूँ मेरी तरफ इशारा करे, जिसे दिखाई दूँ मेरी तरफ इशारा करे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ हूँ मैं।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत नौजवान शायर भाई, वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: कमाल लिखते हैं जी। और मैं खुद को तुझसे मिटाऊंगा एहतियात के साथ, मैं खुद को तुझसे मिटाऊंगा एहतियात के साथ, तू बस निशान लगा दे जहां जहां हूं मैं। और किसी ने पूछा कि तुम कौन हो तो भूल गया,
0: किसी ने पूछा कि तुम कौन हो तो भूल गया,
1: अरे मुझे किसी ने बताया तो था फला हूं मैं,
0: फला हूं मैं भाई। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, आता कीजिए। किसी ने पूछा,
1: किसी ने पूछा कि तुम कौन हो तो भूल गया, मुझे किसी ने बताया तो था फलाहूं
0: मैं। वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया। हर एक शख्स को अपनी पड़ी हुई है यहाँ,
0: हर एक शख्स को अपनी पड़ी हुई है यहाँ,
1: मेरा ख्याल है अपनों के दरमियान हूँ मैं,
0: भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया रफी भाई। और किसी जुबान की चुपके मानी जानते हैं? किसी जुबान की चुपके माने जानते हैं? मुझे बताओ खामोशी का तर्जुमा हूँ मैं।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या मुरस्सा इंतखाब है।
1: शुक्रिया। और मैं किस से पूछूं ये रास्ता दुरुस्त है कि गलत? मैं किस से पूछूं ये रास्ता दुरुस्त है कि गलत? जहाँ से कोई गुजरता नहीं वहाँ हूँ मैं। और इधर उधर से नमी का रिसाव रहता है। अजीब शेर है रिफत भाई। इधर
0: अता कीजिए।
1: नमी का रिसाव रहता है, सड़क से नीचे बनाया गया मकान हूँ मैं।
0: वाह वाह वाह वाह, सड़क से नीचे बनाया गया मकान हूँ मैं, वाह वाह वाह, अता कीजिए।
1: इधर उधर से नमी का रिसाव रहता है, सड़क से नीचे बनाया गया मकान हूँ मैं, और जबी पे हिजर की तहरीर दर्ज करने में, जबी पे हिजर की तहरीर दर्ज करने में किसी पुराने कलम की तरह रवा हूँ, किसी पुराने कलम की तरह रवा हूँ मैं, बस एक उसी पे तो पूरी तरह आया हूँ मैं
0: भाई। वाह वाह वाह,
1: मुझे रायगा तो हाँ हूँ मैं। तो ये आपकी मदद था,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे। और बड़े मुझे याद आया उनका, बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता, देखिए वो था,
1: चले आ जाएगा याद,
0: जहन से निकल गया मेरे एकदम। बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना ही बचा है, जो तुझमें मेरा हिस्सा निकालना है, ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे? बदन के मिलने से इसको जिंदा निकालना है, नजर रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। और कल यार आपने सैफुद्दीन सैफ का जो कलाम पढ़ा, वो बहुत दिनों के बाद सैफ साहब का ये कलाम मुझे सुनने का मौका मिला, तो मैंने आज वो कलाम आपके नाम खान साहब शराफत अली खान साहब की आवाज में पेश करने का फैसला किया है।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: कि वो कलाम इस कदर हसीन है,
1: अपने एक अजीब चीज है वो भी।
0: वाह वाह, बहुत उम्दा। और तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका शुक्रिया रिशद भाई, वक्त देने के लिए, तमाम दोस्तों बहन भाई।
0: हाँ बस कमर्शियल का वक्त हुआ चाहता है, आपकी आमद जो है हमारे प्रोग्राम को यार चार चांद लगा देती है नवीद भाई।
1: बड़ी मेहरबानी आपके।
0: अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे, अपने जुमान में रखे।
1: आमीन आपको भी।
0: और इंशाल्लाह कमर्शियल के वक्फे के बाद हम आपके लिए जो तोहफा लाए हैं आपकी नजर करेंगे, और पहले स्वीडन की नजर करेंगे, जितने आपके अहबाब हैं उन सबकी।
1: जी बहुत मेहरबानी।
0: कितनी तादाद होगी अपने लोगों की वहाँ पर स्वीडन में?
1: काफी है कम्युनिटी, लेकिन डिपेंड करता है कि सिटी में, यहाँ हम थोड़ा छोटे टाउन में रहते हैं, तो यहाँ पे खास नहीं।
0: छोटे टाउन हमेशा बहुत खूबसूरत और मोहब्बत करने वालों के टाउन होते हैं।
1: जी
0: बहुत शुक्रिया नवीद।
1: चले
0: जीते रहो,
1: ख्याल रखिए अपना,
0: जीते रहो, जीते रहो। दोस्तों जो कलाम आज हमारे मोहतरम नवीद साहब लाए थे, उमर नजमी उन नौजवान शायरों में हैं जिनके अशार पढ़कर मैं कहता हूँ कि आने वाला कल उनका होगा। बहुत खूबसूरत नौजवान शुरा पाकिस्तान में अपने कलाम से लोगों को नवाज रहे हैं, और बड़ी हैरत होती है कि आज के इस दौर में नफ्सा नफ्सी के ये खूबसूरत ख्यालात, ये अफकार और ये बेबाकी जो पहले के शुआरा में नहीं थी, इन नौजवानों ने उस कमी को पूरा कर दिया है। और उमर नजमी उन्हीं नौजवान शुआरा में शुमार होते हैं जिन्होंने एक नई तर्ज, नई फिक्र, जदीद और कदीम का एक हसीन मिलाप पेश किया है। अल्लाह करे जोर बयां और ज़्यादा। नवीद जीते रहो यार, तुमने बड़े खूबसूरत कलाम के साथ हमारी महफिल को सजाया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों बढ़ रहे हैं कमर्शियल की जानिब, और कमर्शियल के बाद जिस मोहब्बत, चाहत और प्यार से नवीद स्वीडन से तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत तौकीर बढ़ाते हैं। हमने उनके लिए एक बहुत खूबसूरत गीत का तोहफा रखा है जो इंशाअल्लाह कमर्शियल के वक्फे के बाद उनकी नज़र करेंगे। साथ ही साथ हम खुश आमदीद कह रहे हैं, ए डी चौधरी साहब M62 पर पहुंच चुके हैं और सुनना चाहते हैं एक गीत। तो ए डी चौधरी साहब, आज आप बरवक्त आ गए हैं, आपका तोहफा ज़रूर आपकी नज़र करेंगे।
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियों और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: लंच हो गया।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
5: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
11: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
5: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
11: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260 07 8।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: You're listening to Bradford Asian Radio,
5: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.
6: और दोस्तों, अब हम चल रहे हैं स्वीडन, जहां हमने अपने मोहतरम कॉलर और खूबसूरत लिसनर नवीद साहब के लिए वो तोहफा रखा है जिसे तहरीर किया सैफुद्दीन सैफ ने और इसे गाकर अमर कर दिया खां साहब शराफत अली खां साहब ने। दोस्तों, लोग सारी उम्र कोई काम करते हैं, गाने की बात है तो गाते रहते हैं, लेकिन वो शोहरत इज्जत की उन बुलंदियों पर नहीं पहुंच पाते जिसकी वो दिल में आरजू रखते हैं। लेकिन बास खुशनसीब ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फकत एक गीत गाकर करोड़ों दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। खां साहब मेहंदी हसन खां साहब हों या खां साहब शराफत अली खां साहब हों, ये वो लोग हैं जो नहायत मुनकसरुल मिजाज और डाउन टू अर्थ लोग थे। बहुत कम लोग शराफत अली खां साहब के बारे में जानते हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मगफरत फरमाए। एक गीत गाकर वो शोहरत रातों रात हासिल कर ली जिसके लिए लोग सारी उम्र मेहनत करते हैं। उन्हीं एक नामों में खां साहब शराफत अली खां साहब का नाम भी है।

और दोस्तों अभी आप सुन रहे थे जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, आवाज़ शराफत अली खान साहब की थी। मौसीकी से सवारा था उस्ताद मौसीकार रशीद अतरे ने और बोल तहरीर किए थे सैफुद्दीन सैफ ने। हमने आपसे वादा किया था कि हम एडी चौधरी साहब की खिदमत में हाजिर होंगे M62 पर। उन्हें घर से निकलने में थोड़ी सी ताखीर हो गई है और हम उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे, और फ़ायदा यूँ उठाएंगे कि हमारी काबिल सद एहतराम लिसनर डॉक्टर माहरुख साहिबा तशरीफ़ ला चुकी हैं। आगाज प्रोग्राम में ही तशरीफ़ ले आई थी, लेकिन लंच ब्रेक में वो आप तमाम अदब के शहदाइयों और शेर के मतवालों के नाम एक खूबसूरत तोहफा और अपनी पसंद का एक गीत सुना करती हैं। आज भी डॉक्टर साहब हसब रिवायत हमारी बज़ में मौजूद हैं लंच ब्रेक में। आज जो वो तोहफा लाई हैं तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में, जान निसार अख्तर का खूबसूरत कलाम उन्होंने मुंतखब किया है आपके लिए कि आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो, रस्ते के धुंधलके में किसी मोड़ पे कुछ दूर, रस्ते के धुंधलके में किसी मोड़ पे कुछ दूर एक लौसी चमक जाए तो लगता है कि तुम हो, संदल सी महकती हुई पुरकैफ हवा का झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो, ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर नदी कोई बल खाए तो लगता है कि तुम हो, और जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर, जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर चुपचाप से सो जाए तो लगता है कि तुम हो। डॉक्टर साहब बे इंतहा खूबसूरत इंतखाब हमने अदब के शायकीन और शेर के मतवालों के नज़र कर दिया है। इससे पहले कि हम आपकी पसंद का गीत आपके हवाले करें, मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगा कराची पाकिस्तान से हमारी मोहतरम लिसनर और हमारी बुज़ुर्ग मोहतरमा नूर जहाँ अब्बासी हमारी बज़्म में शामिल हैं। आप हमारे प्रोग्राम को इस कदर प्यार से मोहब्बत से सुनती हैं, लेकिन कभी फरमाइश नहीं करती, कभी ये भी बताइए कि क्या सुनना चाहती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे, नज़रे बद से बचाए। नूरजहां अब्बासी साहिबा, आपकी आमद हमारे प्रोग्राम में खैर व बरकत का बाइस है। चलिए अब चलते हैं डॉक्टर साहब के तोहफे की जानिब। डॉक्टर साहब, आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाती हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और एडी चौधरी साहब, जब तक आपका गीत ख़त्म होगा इंशाअल्लाह M62 पर तशरीफ़ ला चुके होंगे, उन्हें ढेरों दुआओं में, दुआओं के साय में हम उनका तोहफा उनकी नज़र करेंगे। अभी तो आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं। आमद का एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया।

दोस्तों, अब हम प्रोग्राम का आखिरी तोहफा M62 पर मौजूद अपने मोहतरम लिसनर AD चौधरी साहब की नजर कर रहे हैं। आपकी आमद का बे इंतहा शुक्रिया। हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मोहब्बतों के पैगंबर रिफत अब्बास को इजाजत दीजिए। आप सब अहबाब की आमद का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। सब खैर फी अमानिल्लाह। AD चौधरी साहब, तोहफा हाजिर है।

0: ਕਾਲੇ ਕਿਰਨ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका.
4: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
3: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
4: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं.
3: फर्स्ट चॉइस
4: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL.
3: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
4: 01274317644.
5: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर.
6: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें.
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं.
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई. जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है.
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार.
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज.
7: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG. फोन 01274477257.
4: दुबई ज्वेलर्स. व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर. होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक. आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे. फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले. बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से. बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL. बुखारी, पसंद आपकी और हमारी. बुखारी.
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है.
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा. मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं. मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे.
4: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR. टेलीफोन 07885428349. अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड.
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे.
4: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स.
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ. बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN. बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए. नंबर मिलाइए 07414260078.
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
4: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है.
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
4: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए. आज ही तशरीफ लाइए. ओपन 7 डेज. पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA. फोन 01274306567. बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन.
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर.
4: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं.
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए.
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678.
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
12: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online. Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर।
5: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: Bedford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड 424453। महमूद रिजवी।
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
13: You're listening to Bradford Asian Radio,
14: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

हंसते रहो तो मुस्कुराते रहो, जीते रहो तो जागते रहो। अल्लाह तुसा की हजारा खुशिया नसीब करे। आने सलाम, वालेकम सलाम। नाल ही नाल साढ़े जनाब जिगर, साढ़े कलेजे, साढ़े माथे ना झूमर तो सर ना ताज, ज़िया हुसैन साहब वेलकम टू द शो। ये आला संगियो दोस्त बेलियो, तुसा जितों भी ये रेडियो सुनी रहे हो, चाहे कार हो, घरों बार च बार हो, गड्डी च हो, टेक वे च हो, रेस्टोरेंट च हो, या कितने गैरजे ही सुनी रहे हो, तुसा सारे संगियों का दोस्तों का बेली है की वेरी वेरी वॉम वेलकम। एक बार फिर आखसा कश्मीर का पठवार ने रंग तुसा ना मेजबान आबद तुसते प्रोग्राम लाइव स्टूडियो चू पेश करी रहा। अगर नहीं मनना शनी तो फोन शोन करी तो चेक करी कि ना मैं लाइव हूं या नहीं। बोले जी सब तो पहले बड़ा प्यारा जहा सूफियाना गीत ऐसा जनाब पिज़्ज़ा मास्टर मोहम्मद यासीन साहब और उन्होंने जरा पूरा स्टाफ आने और जनाब असाने बड़े प्यारे वीर जिया हुसैन साहब और जनाब एक गुमनाम मौलाना गुमनाम साहब है जनाब सड़े बड़े प्यारे यार भी ये बेली भी है आने माड़े नाना किनसो शर्माने थे सारे टैक्सी ड्राइवर बनाए जिला भी ना कि ने दिल करना ना था उन्होंने अखी जो जरा शर्म सारा ये मारे नाना की रहे वो मैं याद आई जाना सामने बिल्कुल दिसना इस बारे में उन्होंने नाना की ना मौलाना गुमनाम साहब और भी जितने संगी बेली दोस्त वीर पैना परा सुनी रे सारे नहीं ना रेस्टोरेंट आ लेनी टैक्सी ड्राइवर परा

0: Hartford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
11: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
11: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू
7: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स 1-1 Oak Lane BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
13: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
5: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

अस्सलाम वालेकुम सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशात आप डेब प्लस पे भी सुनते हैं ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में BFD एशियन रेडियो के नाम से। और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉइड, दोनों पे हमारे ऐप्स भी मौजूद हैं। तो उन ऐप्स के जरिए जब आप चाहें, जहां भी चाहें, इस वक्त चाहें, आप हमें सुन सकते हैं। और सामीन, हमारी इस वक्त की ये नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ बायक वक्त सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर, और यही नशात इस वक्त CVFM मिल्सबरा से 104.5 FM के जरिए भी पेश की जा रही है। और सामीन, अब प्रोग्राम रंगे महफिल ये आपके मेज़बान सैयद हसन नाज़रे और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलूस पर आदाब पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वाले इस वक्त जहां कहीं भी हमारी ये आवाज़ सुन रहे होंगे, अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी की सेहत अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको सेहत की दौलत से मालामाल रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और साथियों, आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आप हमारा नंबर जानते हैं 01274 3066 77, ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का नंबर है 3066 77। आइएगा, तशरीफ लाइएगा और इस महफिल को चार चांद लगाइएगा। और साथियों, आज के इस प्रोग्राम में हमने एक ही उन्वान के गीत आपके लिए मंतखब किए हैं। आज का उन्वान है जिंदगी। अजिया वही जो सबसे पायदार लगती है, लेकिन हकीकत में सबसे नापायदार अगर दुनिया में कोई चीज है तो वो है जिंदगी। एक सांस है तो इधर है और एक सांस नहीं है तो उधर है। जब इंसान हयात होता है तो यूं लगता है कि इसने कभी मरना ही नहीं, और जब मर जाता है तो यूं लगता है कि ये कभी जिंदा हुआ ही नहीं था। यही है जिंदगी की बसात, यही है जिंदगी की औकात। जिंदगी क्या है अनासर में जहूर तरकीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना।

और सामिन, अभी आप आज के इस प्रोग्राम का पहला गीत तो सुन रहे थे, आवाज थी लता की। फिल्म का नाम था कहीं और चल। और सामिन, अब इस प्रोग्राम का दूसरा गीत शामिल करते हैं, खूबसूरत आवाज है किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है काला पत्थर। और इस गीत के बाद हम चलेंगे ब्रेक पे।

0: 1-800-630-6677।
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
1: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
1: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काकी की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
1: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffield Lane, Bradford, BD95ER, 01274914942।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
5: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
4: सोफी ज्वेलर्स?
5: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
4: सोफी ज्वेलर्स, 1-1 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
6: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
6: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
6: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
1: 33 Wetley Lane, Bradford, 01274201679।
6: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: सामीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सना। आप सुन रहे हैं बेफुटेजन रेडियो। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर। जी सामीन, अभी हमारी बहुत ही प्यारी सी कॉलर्स हैं शायदा, जिन्होंने हमें कॉल की थी। उन्होंने अपना बहुत ही पसंदीदा हमें गीत बताया है। शेफील्ड से कॉल की उन्होंने। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है ज़िंदगी के हवाले से। तो ज़िंदगी की ना टूटे ना लड़ी, तो ये जी बहुत ही प्यारा सा गाना जो है हम शायदा जी आपके नाम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेफील्ड से कॉल करने का। तो चलिए जी, आपको बहुत ही प्यारा सा गाना।
1: ज़िंदगी के हवाले से मेरे ख्याल में तरंग भी बैठी हुई है और कुछ कहना चाहती है। तो
0: तरंग, आप क्या कहना चाहती हैं?
1: आप इनके मुंह पे हाथ क्यों रख रही हैं, पहले तो ये बताएं।
0: मैं इसके मुंह पे हाथ इसलिए रख रही हूँ कि उल्टा सीधा ज़िंदगी के बारे में ना बोल दे।
1: चलिए तरंग आ जाए।
0: तरंग, क्या कहना चाह रही है जिंदगी के बारे में, जरा बताएं प्लीज।
2: जी अस्सलाम वालेकुम। आज की रात हम नाम करना चाहते हैं उन लोगों के जो जिनके दिल टूटे हुए हैं। एंड पहले तो मुझे माफ करना, मेरी उर्दू थोड़ी सी खराब है। उर्दू में मैं पंजाबी ले आती हूँ। तो आज की शाम उन लोगों के नाम करना चाहती हूँ जिनका पहला प्यार उनके पास नहीं है। एंड वो लास्ट टाइम अपने पहले प्यार से कुछ कह नहीं पाए, एंड वो भी कहना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने पहले प्यार के लिए कुछ बातें कह सकते हैं, शायरी भी कर सकते हैं, और आप अपनी स्टोरी भी कुछ लफ्जों में बता सकते हैं हमें। एंड आप मेरी उर्दू पे मत जाना प्लीज। सो ये बताने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 01274306677 पे, और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप भी है 07800599563।
1: और आपने शायरी अभी कुछ सुनानी है या बाद में
2: शुरू करेंगे?
1: पहले तो फिर अभी जिंदगी का आपने नाम लिया, एक शेर ज़हन में आ गया, तो मैंने कहा सुनने वालों के नाम करते हैं कि मुझसे क्या पूछते हो जिंदगी के बारे में, मुझसे क्या पूछते हो जिंदगी के बारे में, अजनबी बताए क्या अजनबी के बारे में।
0: क्या बात है।
1: चलिए अब शायदा की फरमाइश।
0: जी बिल्कुल
1: ठीक है। ओके,

और सामिन, अभी आप फरमाइश सुन रहे थे, पसंद सुन रहे थे शायदा की, शेफील्ड से आपने हमें याद किया था, बेहद शुक्रिया आपकी कॉल का, और उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी पसंद सुन ली होगी। कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया। सामीन, अब यूं करते हैं कि शकील साहब, आपने भी जिंदगी के हवाले से एक गीत सुना चाहा है मोहम्मद रफी की आवाज में, पसंद आपकी, पेशकश ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की। और नवीद साहब, आपने स्वीडन से हमें याद किया, बेहद शुक्रिया आपका भी, इंशाल्लाह आपसे भी आज मुलाकात रहेगी शायरी में। और सामीन, अगर आप भी आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ निभाना चाहें तो कॉल कर सकते हैं 01274306677 के जरिए।

जी सामिन, इस टाइम आप सुन रहे हैं परफोरेशन रेडियो एंड अभी हमें रिक्वेस्ट आई थी रुखसार चौधरी जी की मैनचेस्टर से एंड वो उन्होंने एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, तो ये सॉन्ग नेक्स्ट सॉन्ग जो हम लगाने जा रहे हैं ये आपके नाम चौधरी जी।

0: जी सामीन, अभी आप बहुत ही प्यारा सा गीत सुन रहे थे रुखसार चौधरी साहब की पसंद का। मैं उम्मीद करती हूँ रुखसार चौधरी साहब आपको हमारा ये बहुत ही प्यारा सा गीत बहुत पसंद आया होगा। तो जी सामीन, अभी चलते हैं हम अपनी ब्रेक की तरफ। अगर किसी को भी हमें कॉल करनी है हमारे रेडियो 1439 AM पर, आप हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं 01274306677। उसके बाद हम अपना लाइव का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। आप हमें अच्छे अच्छे से शेर व शायरी भी सुना सकते हैं और अच्छे से गीत भी सुना सकते
1: और
0: हैं,
1: अपनी स्टोरी भी सुना सकते
0: और
1: हैं।
0: अपनी स्टोरी
1: एंड थैंक यू चौधरी साहब जी।
2: Your business being heard on the radio. Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
0: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
0: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
0: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
0: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
4: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
3: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
3: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
3: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं हमारी साथी।
1: जी, मैं हूँ सना, आपकी होस्ट आज के लिए। आप सुन रहे हैं हमारा ब्रेफर्ड एजेंट रेडियो। हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306677। अगर आपको हमें कॉल करके एक अच्छा सा गीत लगवाना चाहते हैं या आप शेर व शायरी सुनाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपना गीत हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं 07800599563 पर।
2: और रेडियो में तड़का लगाने आपके साथ जुड़ी है तरन भी, एंड होप आपको अच्छी लग रही होंगी, आपको मेरी उर्दू समझ में आ रही होगी। तो चलिए आज बातें करते हैं जिंदगी पे, अकेलेपन पे। आइए जुड़िए हमारे साथ, कॉल कीजिए, शायरी कीजिए।
0: और अब यूं करते हैं कि हमारे पहले सामने टेलीफोन लाइन पे आ चुके हैं, इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
0: जनाब क्या हाल है, ठीक है, आप खैरियत से हैं?
3: कैसे हैं?
0: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? ठीक है,
3: अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, सब ठीक है।
0: जी जी जी।
3: तो आपके मेहमान आए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
3: जी शुक्रिया। तो तमाम सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, जिनमें खालिद अली मीर साहब, अली भाई है, चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब, महबूब इलाही है, नवीद भाई है, हमारे उस्मान भाई अगर सुन रहे हो
0: जी, तो
3: सादिया बहन, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: आपको भी वालेकुम अस्सलाम, सभी सुनने वालों की जानिब से आपको भी अस्सलाम।
3: शकील है कतील शिफाई, उनकी गजल है।
0: माशाल्लाह, मैंने सोचा आप कह रहे हैं कि शकील की है, आपकी अपनी। जी जी, कतील की सुनाइए।
3: कतील शिफाई।
0: जी जी।
3: कुछ राहतों की खोज में आई थी जिंदगी।
0: हाँ हाँ, कुछ राहतों की खोज में आई थी जिंदगी,
3: देखा तो एक लहद में समाई थी जिंदगी।
0: क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत
3: क्या क्या क्या ना एक शख्स ने रखी संभाल कर,
0: क्या क्या ना एक शख्स ने रखी संभाल कर,
3: मालूम अब हुआ के पराई थी जिंदगी।
0: क्या कहने, मालूम अब हुआ के पराई थी जिंदगी। क्या शेर है,
1: क्या बात है, बहुत
3: हो जाए रेजा रेजा लगे जब जरा सी ठेस,
0: हो जाए रेजा रेजा लगे जब जरा सी ठेस,
3: क्या सोच के खुदा ने बनाई थी जिंदगी।
0: क्या कहने, क्या कहने, क्या शेर है, वाह वाह वाह वाह।
3: था दुश्मनों के वास्ते ये इबरत का मकाम,
0: था दुश्मनों के वास्ते इबरत का ये मकाम,
3: कंधे पे दोस्तों ने उठाई थी जिंदगी।
0: क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह।
3: वापस गई अदम की तरफ खाक ओढ़ कर, वापस गई अदम की तरफ खाक ओढ़ कर, सांसें पहन के दहर में आई थी जिंदगी।
0: क्या कहने, आते हुए अजां हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए चले गए।
3: उड़ता हुआ वो एक परिंदा है अब कहां,
0: वाह वाह।
3: उड़ता हुआ वो एक परिंदा है अब कहां, अपनों परों पर जिसने सजाई थी जिंदगी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: अक्षी शेर मत है, देखा कुमार खानाए हस्ती में जब कतील।
0: हाँ, वाह वाह।
3: देखा कुमार खानाए हस्ती में जब कतील, कतील। दाव पर हर्ष बशर ने लगाई थी जिंदगी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत अच्छा।
3: यार तो शुक्रिया। तो एक अनवर फरीदी की गजल है।
0: क्या कहने, जिंदगी के हवाले से आपका लाजवाब और हस्ब आल इंतखाब के लिए आपका बेहद शुक्रिया शकील साहब।
3: अनवर फरीदी फरमाते हैं, वक्त ये हम पर भी गुजरा जिंदगी,
0: वाह वाह।
3: वक्त ये हम पर भी गुजरा जिंदगी, तुझको भी बस में न पाया जिंदगी।
0: बहुत
3: करब है तू, दर्द है, आजार है, बारहा तुझको है परखा जिंदगी।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: कत्ल हमको कर दिया हालात ने,
0: कत्ल हमको कर दिया हालात ने,
3: तुझको किसने मार डाला जिंदगी।
2: वाह, ये मेरी फेवरेट है,
0: ये देखें तरन ने भी।
2: मेरा दिल आ गया इस पे, मेरा दिल आ गया।
1: दोबारा से बोल दे
2: एक बार फिर से,
3: तुझको किसने मार डाला जिंदगी।
0: हाँ हाँ,
3: वक्त ने सबके कशाएं छीन ली।
0: हाँ हाँ हाँ,
3: वक्त ने सबके कशाएं छीन ली, अब अंधेरों में है तनहा जिंदगी।
0: वाह वाह,
1: बहुत खूब।
3: रेजा रेजा हो गया मेरा बदन, रेजा रेजा हो गया मेरा बदन, तूने इतना मुझको पहना जिंदगी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: मौत आएगी सहर के हाथ से,
0: मौत आएगी सहर के हाथ से,
3: रात है दुनिया सितारा जिंदगी।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: थी कभी गुलशन मगर अब हो गई, थी कभी गुलशन मगर अब हो गई, चार तिनकों का तमाशा जिंदगी।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: है शिकस्ता जिस्म में दमखम अभी, है शिकस्ता जिस्म में दमखम अभी, देखो ये एक जख्म गहरा जिंदगी।
0: क्या कहने, वाह वाह,
1: बहुत
3: शुक्रिया। हलचलों को मौत सी क्यों आ गई,
0: वाह वाह,
3: कर जरा फिर हशर बरपा जिंदगी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
3: शुक्रिया। शिद्दते गम में हुआ ना फैसला, शिद्दते गम में हुआ ना फैसला, ये मुसलसल मौत है या जिंदगी।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: लोग इसको जान कहते हैं मगर,
0: लोग इसको जान कहते हैं मगर,
3: है ये कितनी जानलेवा,
0: है ये कितनी जानलेवा जिंदगी। बहुत अच्छे शकील साहब।
3: कसम पुरसी देखिए नादार की,
0: कसम पुरसी देखिए नादार की,
3: कट रही है बेइरादा जिंदगी।
0: क्या कहने, बहुत खूब, बहुत
3: शुक्रिया। की शेर सुनाते हैं। ख्वाहिशों की भीड़ में गुम हो गई,
0: ख्वाहिशों की भीड़ में गुम हो गई,
3: ख्वाहिशों की भीड़ में गुम हो गई, ले गई अनवार
0: धोखा जिंदगी। क्या कहने। और सागर सिद्दीकी का शेर जाते जाते आपके नाम के,
3: शुक्रिया।
0: जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। बहुत शुक्रिया शकील साहब।
3: मेरी हिम्मत ने मुंह मोड़ा है हर मोजे हवादिस का,
0: वाह वाह।
3: मेरी हिम्मत ने मुंह मोड़ा है हर मोजे हवादिस का, मैं तूफान से खेला हूँ सबूत जिंदगी लेकर।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
3: शुक्रिया, बहुत बहुत
0: बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारी जानिब से आपके लिए बहुत सी तालियां। सलामत रहें, खुश रहें।

0: जी तरन, कैसे लगी आपको शकील साहब की शायरी?
1: मुझे बहुत प्यारी लगी, मेरा दिल आ गया शायरी पे।
2: क्या कहने, हमेशा हस्बे हाल। और देखें आज का मौजूद था हमारा इस प्रोग्राम का कि जिंदगी के हवाले से अशआर सुनाइए और कमाल महफिल लूट लिया। आते हैं वो सबसे पहले, दरअसल ये सदर महफिल होते हैं तो आना इन्हें सबसे आखिर पे चाहिए, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम का जो है ना एक उसे समो के रख देते हैं अपनी शायरी में, लेकिन ये हमेशा आते पहले हैं
0: माशाल्लाह। और सामीन, अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे प्रेफर्ड एशियन रेडियो स्टूडियो पर कॉल कर सकते हैं 01274306677 पे, और आप हमें सुन सकते हैं रेडियो FM पर, हमारी वेबसाइट पे जाके www.preferredasianradio.co.uk पर। अगर आप अपनी पोइट्री और अच्छा सा गीत हमें अपने पहुंचा सकते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं 07800599563 पर।
2: और सना, हमारे अगले कॉलर स्वीडन से, बहुत दूर से, यूरोप से, स्वीडन से तशरीफ ला चुके हैं
0: जी।
2: और तालियों की गूंज में इन्हें भी एक बार हम फिर खुश
0: आमदीद कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब।
3: जी वालेकुम अस्सलाम।
2: जनाबे मोहतरम, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं?
3: जी अल्लाह का शुक्र शाह जी, आप सुनाए, सब खैर है?
2: अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत करम है, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिल रही है, खैरियत रही?
3: जी जी सब खैर है जी, सब खैर।
2: सही सही। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए, सुनने वालों के लिए क्या तोहफा लाया?
3: मुझे अंदाजा नहीं है बात कहाँ किस।
2: आज जिंदगी के हवाले से गपशप भी हो रही है, शायरी भी हो रही है, और आपके लिए हम ओपन कर देते हैं, आप जिस हवाले से कुछ आपके पास है।
3: मैंने सुने कुछ कोई बात थोड़ी सी, तो जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं।
2: हाँ हाँ, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं,
3: और क्या जुर्म है पता भी नहीं।
2: क्या कहने, लाजवाब है।
3: तो बाकी अशआर तो बहुत, लेकिन आपके नजर करने के लिए ना बंदा बड़ा ही मोहतात हो जाता है कि यार तू कलाम ऐसा हो कि अहले ज़ौक की नजर कर सके।
2: बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया।
3: जो छुपाने की थी वो बात बता दी मुझको,
2: जो छुपाने की थी वो बात बता दी मुझको।
3: शाह जी, अब आपने जोड़नी है बात।
2: जी जी,
0: ये है
3: डॉक्टर सलमान अख्तर साहब।
2: डॉक्टर सलमान अख्तर,
3: जावेद अख्तर के भाई बड़े।
2: जी जी, सलमान अख्तर साहब। जी जी
3: जी, जो छुपाने की थी वो बात बता दी मुझको।
2: क्या कहने,
3: जिंदगी तूने बहुत सख्त सजा दी
2: मुझको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: मैं धकेल आया हूँ ये किसको कुएं में आखिर, कौन फिर चीख उठा, किसने सजा दी मुझको।
2: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: और एक बात सुनिएगा
2: जी जी,
3: हसन भाई के थे बुजुर्गों में भी मासूम सिनफ लोग बहुत,
2: थे बुजुर्गों में भी मासूम सिनफ लोग बहुत। क्या है मिश्रा,
3: थे बुजुर्गों में भी मासूम सिफत कितने लोग, 100 बरस जीने की हर रोज दुआ दी मुझको।
2: क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, लाजवाब है। बहुत अच्छे,
3: और
2: बहुत अच्छे। ये मुझे अपने हमारे जी जी, हमारे ब्रेडफुट के एक लोकल शायर थे हजरत शाह, बहुत अच्छे रेडियो के ब्रॉडकास्टर भी थे, आप हम में नहीं है, उनका एक खूबसूरत शेर इसी हवाले से था, जैसा जिस हवाले से आपने बात की है कि अजाब है बेबसी में इतनी तवील उम्रें, अजाब है बेबसी में इतनी तवील उम्रें, दे एक दिन ही यारब दे इख्तियार वाला।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
3: आपने ना तार और शेर देनी
2: है। जी जी जी जी जी जी।
3: देखें, ये इख्तियार और बे इख्तियारी ये तो सुपुर्दगी का मामला, मेरा फलसफा हयात कुछ ऐसा है कि आप सुपुर्द हो जाए तो चैन ही चैन है, इख्तियार तो बहुत बड़ी इब्तला है।
2: बेशक बेशक, ऐसे
3: तो दम घुटा जाता है हराती हुई सांस के साथ।
2: वाह वाह,
3: ये बड़ा ही कीमती शेर है। हर उस बेवफा के नाम जो वफादार की वफा की कदर नहीं करता, कि दम घुटा जाता है हर आती हुई सांस के साथ, तूने क्यों अपने इरादों की हवा दी मुझको।
2: क्या
0: क्या बात है, एक बार फिर से बोलते हैं।
3: दम घुटा जाता है हर आती हुई सांस के साथ, तूने क्यों अपने इरादों की हवा दी मुझको,
2: हवा दी मुझको।
3: और इस पे मुझे अमजद इस्लाम अमजद साहब याद आते हैं, उनका एक शेर था हसन भाई के,
2: जी जी।
3: आए हाय, वो चिराग है जहाँ कभी जिसकी लो न कभी हवा से निगू
2: निगू हुई तेरी बेबसी आए हाय
3: तेरी बेवफाई के वसवसे
2: उसे चुपके चुपके
3: चुपके
2: बुझा गई। क्या कहने हैं, लाजवाब गजल है वो भी। सही सही,
3: काश कोई कदर करे।
2: एक शेर मुझे भी इस हवाले से याद आया, किसी का शेर है बड़ा ही खूबसूरत है कि तेरी यादों के दिए जब भी किए हैं रोशन, तेरी यादों के दिए जब भी किए हैं रोशन, बेनियाजी तेरी आ आ के बुझा जाती है।
0: क्या बात है।
3: वाह। देखिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ हर उस खुशनसीब को जिसे कुछ चाहने वाला मिला, कि ऐसा नहीं है कि आप जैसा कोई और नहीं, बस उसने आपको अपना मान लिया, इसकी कदर कीजिए। और अपने आप को इतना वो क्या है कि अगर दिलबर की रसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के
2: नाम से मशहूर हो जाए। सही, बहुत ही अच्छा
3: तो ये भी
2: गीत। और एक एक शेर नवीद साहब वो भी है ना कि खूबसूरत मिस्रा, उसका दूसरा मिस्रा इस वक्त ज़हन में आ रहा है, पहला कहीं गायब हो गया। वो खूबसूरत इस एतबार से है कि बैठे रहो तुम अपनी, हम जा रहे हैं वहां जहां दिल की कद्र हो, हम जा रहे हैं वहां जहां दिल की कद्र हो, बैठे रहो तुम अपनी अदाएं संभाल के।
0: क्या बात है, क्या
2: क्या कहने।
3: मुझे लगता है ये मिस्रा साहब ने ऐसा कहा कि बैठे रहो तुम अपनी
0: अदाएं समेट।
2: हाय हाय, बहुत खूब।
3: देखिए मैंने इस पे गिरा कर दी कि बैठे रहो तुम अपने अना के गुरूर।
2: बेशक,
0: क्या बात है, ये भी सही है।
2: बेशक, ये भी अच्छा, अच्छी तज़मीन है, खूबसूरत।
3: देखिए सुनिए, अपनी तो कब्र पे तय है कि ये कतबा होगा।
2: आहा,
3: अपनी तो
2: कब्र पे
3: ये तय है कि ये कतबा होगा, एक ना एक दिल में तो ये आदमी जिंदा होगा।
2: बहुत खूब, बहुत खूब,
0: बहुत अच्छे।
2: और कहते हैं ना कि खाक में मिल जाएगा जब मेरी हस्ती काम। हमारे जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे उनका उनकी डायरी पे ये लिखा हुआ मैंने पढ़ा था और ज़हन में बैठ गया अभी तक याद है कि खाक में मिल जाएगा जब मेरी हस्ती का मकाम, ताजा होंगी यादगारें इस मेरी तहरीर से।
0: क्या बात है, वेरी नाइस।
3: वो हमारे एक टीचर थे, हमें ज़रात पढ़ाते थे।
2: अच्छा,
3: लेकिन शेर बड़ा जिंदा है वो, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो।
2: खूब गुजरेगी
3: जो
2: मिल बैठेगी।
3: आपसे बात करते हुए हमेशा ऐसा लगता है,
2: बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही।
3: और फर्क कितना है कि आंखों से परे है वरना, शेर सुनिएगा कि फर्क कितना है
2: कि आंखों से परे है वरना
3: रात के वक्त भी सूरज कहीं जलता होगा।
2: क्या कहना, फिर से पढ़िएगा, बड़ा ही अच्छा है।
3: फर्क कितना है कि आंखों से है ओझल वरना, रात के वक्त भी सूरज कहीं जलता होगा,
2: डूबते शाम का मंजर
3: वो का देता है भला साथ यहाँ।
2: आय
3: हाय हाय, कोई होगा मेरे जैसा तो अकेला होगा।
2: बहुत अच्छे। और फराज का वो शेर याद आ रहा था मुझे आपके सूरज के शेर के हवाले से कि वादा तो कर गए थे कि आएंगे शाम को, सूरज खुदा के वास्ते रहना परे परे।
3: सूरज खुदा के क्या मिलता है,
2: रहना परे परे,
3: रहना परे परे। वाह जी। देखें ये आस या तो कोई बधाए ना, अल्लाह करे कि किसी को किसी की आस हो तो मुकम्मल हो, वरना ये यास बन जाती है, ये
2: कसर
3: जान नहीं छोड़ती। तो इससे बड़ा दर्द कोई नहीं है। और खिड़कियां देर से खोली ये बड़ी भूल हुई, मैं ये समझा था कि बाहर भी अंधेरा होगा।
2: बहुत अच्छे। क्या कहने,
3: मैं ये समझा था कि बाहर भी अंधेरा होगा।
2: मुझे इससे वो शेर याद आया कि किवाड़ के हवाले से बड़ा ही खूबसूरत शेर बचपन में कहीं रेडियो पे सुना था कि बैठा है किस ख्याल में ए कल्बे नामुराद, उस घर में कौन आता है जिसमें न हो दिया।
3: आए,
0: क्या बात है।
2: और ये कौन झांकता है किवाड़ों की ओट से, बत्ती भुजा के देख सवेराना होके।
3: हसन भाई, ये असल में ना आपसे बात करने का लुत्फ ये है कि आप बात से बात निकालते हैं और शेर से शेर।
2: बस अच्छा अच्छा देखिए सना को भी जोश आ गया कि हम
0: आप दोनों की बातों को सुन के तो मैंने सोचा चले मैं भी एक अच्छा सा करती हूँ।
3: चाहता हूँ पेरेंट्स तारुफ नहीं हो सका, मैं तो हसन भाई को कॉल।
2: जी जी सना भी है स्टूडियो में हमारा साथ दे रही है और तरन भी, और दोनों भी शायरी की बड़ी उस्ताद है ये भी।
0: चले अर्ज करते हैं।
2: जी जी
0: मोहसिन वो मेरी आंख से उजल हुआ ना जब, मोहसिन वो मेरी आंख से उजल हुआ ना जब, सूरज था मेरे सर पर मगर रात हो गई।
1: वाह
0: क्या बात है।
3: अरे मोहसिन के देखें अभी हम कभी शेर जोड़ते हैं कभी शायर जोड़ते हैं, तो मुझे मोहसिन का एक शेर बड़ा बड़ा ही मेरे दिल के करीब है कि मेरे दर्द पे ससन भाई मदद कीजिएगा।
2: जी जी जी
3: मेरी दोपहर पे ये शाम क्यों, मेरे सब्र पे ये अजर क्या, मेरी दोपहर पे ये शाम क्यों, मुझे ओढ़ने दे अज़ियतें
2: मेरी आदतें ना खराब कर। क्या कह रहे,
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब
2: जी जबरदस्त है।
3: और सुनिए कि हमारे हिस्से में ले दे के एक वार आया, चलो यही सही तुमको तो कुछ करार आया।
2: बहुत अच्छे बहुत अच्छे करार, और करार दिल को सदा जिसके नाम से आया, करार दिल को सदा जिसके नाम से आया, वो आया भी तो किसी और काम से आया।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब।
3: आप सुनिएगा शेर को फिर से, हमारे हिस्से में ले दे के एक वार आया, चलो यही सही तुमको तो कुछ करार आया।
2: बहुत खूब बहुत खूब।
3: जब अपने आप पर मेरा यकीन उठ सा गया,
2: वाह वाह,
3: गया गमे हयात का उस रोज एतबार
2: आया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
3: और जिस एक मोड़ से मंजिल मुझे करीब लगी, रहे हयात में वो मोड़ बार बार आया।
2: बहुत अच्छे। जिगर का वो शेर जहन में आ रहा है इस गजल की जमीन में, इसी रदीफ में काफी हमें, कि करार खूबसूरत शेर के, काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया, काम आखिर जज्बाए बे इख्तियार आ ही गया, दिल कुछ सी सूरत से तड़पा उनको प्यार आ ही गया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है।
3: बड़े ही खुश नसीब होते हैं वो दिल जिन एतबार आ जाए, गमे हयात का उस रोज एतबार आया, जिसे एक मोड़ से मंजिल मुझे करीब लगी, रहे हयात में वो मोड़ बार
2: बार, बार, बार आया,
3: और सफर के खत्म पे ऐसा लगा मुझे गोया, सफर के खत्म पे ऐसा लगा मुझे गोया, मैं एक कर्ज था खुद पे जिसे उतार
2: आया। और मुझे एक छोटा सा वाक्या इस शेर से याद आ गया, और फिर साथ में जुड़ा हुआ शेर भी, कि यहाँ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे हमारा पाकिस्तान से वापसी थी, और
3: शाह जी आप जल्दी करते हैं, अगली बार सुनाते हैं शेर का बदल लेते हैं, सॉरी।
2: जी जी तो वो क्या, चलिए मैं शेर पे ही आ जाता हूँ, कि एक तुम ही ना जब लगेज आ रहा था ना, तो उसमें क्या हुआ कि दूसरों का सामान वही बार बार बेल्ट से आता है और जा रहा था, तो मैंने इतने में जो केबिन क्रूज थे एयरलाइन के वो भी सारे आ गए, तो मैंने एक शेर पढ़ा, तो उन सभी ने भी बड़ी दाद दी मुझे मौके पे ही, कि एक तुम ही ना मिल सके वरना, एक तुम ही ना मिल सके वरना, मिलने वाले बिछड़ बिछड़ के मिले।
0: क्या बात है क्या बात है, ये सामान के लिए था स्पेशली।
3: जिंदगी जो हयात है ना, हयात
2: जी जी,
3: जिंदगी की आप बात कर रहे थे, तो इसकी ना इसकी जहते होती हैं, हर सिमत में हर लम्हे हम नहीं जीते, कभी मैं किसी लम्हे में किसी सिमत को देखता हूँ जिसकी जेह तो सिमत एक लम्हे में एक साथ एक जैसी हो जाए, वो साथी हुआ करते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज हो जाते हैं,
2: बेशक ऐसे,
3: लेकिन कभी भी आप इसको कैद नहीं कर सकते,
2: बेशक।
3: तो अगला शेर सुनिए, शायद इसका हस्बे हाल हो जाए, कि मेरी ही जात का साया पड़ा ना हो उस पर,
2: वाह वाह,
3: मेरी ही जात का साया पड़ा ना हो उस पर, जिसे करीब से देखा उसी पे प्यार आया।
2: बहुत अच्छे, क्या कहने, लाजवाब है।
3: मेरी ही जात का साया पड़ा ना हो उस पर, जिसे करीब से देखा उसी पे प्यार आया। अजीब बात थी कुछ आज तेरे लहजे में, कि पहली बार मुझे तुझ पे एतबार आया।
2: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कहते ना एक शेर इसी हवाले से याद आया था, कि देख कर तुझको मुझे बेसाख्ता प्यार आता है, देख कर तुझको मुझे बेसाख्ता प्यार आता है, नक्श किस तरह संवारे हैं खुदा ने तेरे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
3: देखिए आप फिर वहां पे कैद करते हैं, मुझे तकरार हो जाएगी इस बात पे।
0: इसी में तो मजा आता है, एक तरफ से एक शेर शायरी उसको हम जवाब दें आपको।
3: पता क्या वो हवाला आपका कुछ और है शाहजी और मेरा कुछ और है। आप होने को सब कुछ समझते हैं, मैं ना होने को।
2: जी जी ऐसे ही।
3: और अहमद फराज साहब लिखते हैं कि जो गैर थे वो इसी बात पे हमारे हुए, जो गैर थे वो इसी बात पे हमारे हुए कि हमसे दोस्त बहुत बेखबर हमारे हुए।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: और किसे खबर वो मोहब्बत थी यार रकाबत थी, बहुत से लोग तुझे देखकर हमारे हुए।
2: कहते ना कि उसको दरपर्दा कहीं हमसे मोहब्बत ही न हो, उसको दरपर्दा कहीं हमसे मोहब्बत ही न हो, जो किसी और को हमारा नहीं बनने देता,
0: बनने देता। क्या बात है,
3: वाह वाह वाह वाह। और सुनिए कि अब एक हजूम शिकस्ता दिला है साथ अपने, अब एक हजूम शिकस्ता दिला है साथ अपने, जिन्हें कोई ना मिला हम सफर हमारे हुए।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ब्रेक का वक्त हो गया, अंदाजा तक हमें नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत खुशी हुई, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। ठीक है,
3: बहुत मेहरबान।
2: अल्लाह।
4: In class to help you pass first time, need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट दिलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही दिलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: जी सामीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको रंगे महफिल में खुश आमदीद कहते हैं। अभी आप सुन रहे हैं हमारा प्रेफर एजियन रेडियो 1430 AM पर। अगर आप हमारी नशियात सुनना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर। और नवीद साहब, आपने हमें कॉल की थी स्वीडन से, हमें बहुत मजा आया आपकी शेर व शायरी सुन के। और हसन जी, आपने भी बहुत ज्यादा कमाल कर दिखाया। क्यों सरन,
1: हसन जी तो ब्रेक ही भूल गए।
0: महफिल आपने जमा दी भाई, दोनों ने मिलके जमा दी।
2: नाम ही है ना रंगे महफिल,
0: रंगे महफिल। जब रंगे महफिल नाम हो तो उसमें रंग तो जमाना पड़ता ही है।
1: इतनी प्यारी कॉल आई थी कि हम तो ब्रेक ही भूल गए थे कि ब्रेक भी करनी है। हसन भाई तो बिल्कुल ही भूल गए थे। बहुत खूब,
0: बहुत खूब, बहुत अच्छा।
2: एक खूबसूरत गीत भी है और हमारे रुखसाद चौधरी साहब
0: चौधरी जी, ये आपके नाम।

0: और देखिए अब तालियों की गूंज में हमारे अगले बहुत ही मोहतरम सुनने वाले तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। चश्मे रोशन दिल माशाब, नहायत काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम, बावकार बाज़ौक बाशोक, बहुत नफीस बहुत लतीफ़ बहुत शफीक और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत पीर हसन शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं तरन भी हैं और सना भी हैं, वो भी आपको वालेकुम अस्सलाम कह रही हैं।
1: जी माशाल्लाह, मैं हकीर, मैं नाचीज और खाकथा की तरफ से इन दो माशाल्लाह लहजेद हस्तियों को मोहब्बतों भरा, चाहतों भरा, उल्फत भरा, हकीकत भरा, नहायत अदब और नहायत एहतराम से, दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत सलाम और आदाब।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: हजूर कैसे हैं आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा समा आपने बांधा हुआ है और माशाल्लाह क्या बैतबाजी शुरू है, माशाल्लाह क्या क्या कहने, माशाल्लाह लाजवाब। पहले उस्ताद मोहतरम थे मनाब शकील साहब आए थे माशाल्लाह, वो कमाल कर गए, और फिर नवीद साहब आए, उन्होंने तो कमाल की लाती तोड़ दी।
0: और कह रहे थे कि अभी मेरी सेकंड शिस्त है रुखसार चौधरी साहब के बाद, मैंने कहा बिस्मिल्लाह फिर आ जाइएगा।
1: ओ सर मुझे इल्म नहीं था, लेकिन मैं तो बस ये है गया जनाब, उनको तो आना चाहिए, लेकिन मैं तो
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं आप सुनाएंगे, आपसे भी हम ज्यादा नहीं करेंगे, आप कुछ सुनाएंगे तो फिर हम उन्हें वापस दोबारा लेंगे।
1: सर इतने माशाल्लाह आपके पास भी माशाल्लाह साहिबान अकल और दानिश हस्तियां तशरीफ फरमा है, और माशाल्लाह राणा साहब जो आए थे माशाल्लाह, वो कहते हैं ना कि जब राणा आ जाए तो राणे के ऊपर फिर कौन आ सकता है,
0: उनका ज़ौक के
1: हम बड़ी प्यारी और बड़ी महंगी शख्सियत है, जो
0: दाद देते हैं उनके ज़ौक की हम। जी जी
1: कमाल की शख्सियत है, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह, और जिंदगी के ऊपर जो है कहते हैं कि बोलना, कहते हैं कि वो तो है ही बहुत मुश्किल, हर बंदा जिंदगी को बोल भी नहीं सकता के हाल
0: ऐसे ऐसे,
1: तो बहुत ही प्यारा माशाल्लाह प्रोग्राम जा रहा है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से जनाब पीर सैयद राब हैदर शाह साहब को बहुत बहुत सलाम है जी, और मोहतरम शकील साहब है, जंगीर साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, महबूब लाई भाई हैं, चौधरी फरियाज साहब हैं, और राणा नवीर साहब हैं जी, इन सब को, और आज के माशाल्लाह ब्रेड फॉर रेशियो की नशरियात जहाँ जहाँ तक सुमातों तक जा रही है, सभी को मेरी तरफ से नहायत अदब और एहतराम से बहुत बहुत सलाम और आदाब।
0: वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी तस्लीमात।
1: थैंक यू सर। वो कहते हैं कि जिंदगी बस एक दोस्त वफादार चाहती है, उफ कितनी मासूम और नादान है ये जिंदगी, खुद बेवफा है और वफा चाहती है।
0: बेशक बेशक।
1: तो ये एक छोटी सी मैं पोएट्री लेके आया हूँ, और मैं आपकी नजर, और माशाल्लाह वैसे बस ये छोटा सा तालिब इल्म मेरा कोई बात।
0: ओ आपकी कॉल ना जाने क्यों कट गई है, माजरे चाहते हैं कि कॉल कट गई है, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो दोबारा कॉल कर लीजिएगा, आपको दोबारा हम ऑनलाइन लेके चलेंगे। हमारी तरफ से तो बिल्कुल हम सुन रहे थे, आमतन गोश्त थे आपकी बातों में, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। प्लीज आप दोबारा कॉल कर लें ताकि आपकी बात मुकम्मल हो सके और इस प्रोग्राम को हम आगे लेके जा सकें, आपकी दोबारा शिरकत की हम मुंतजर हैं।

0: सर, मैं माजरत का हकदार हूँ कि मेरी तरफ से ही जो है ना वो गया था, जिसके लिए मैं आपसे और तमाम सामने से माजरत चाहता हूँ कि वो मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से जो है ना वो कॉल ड्रॉप हो गई।
1: जी जी, कोई मसला नहीं, आपको दोबारा खुश हम दे। जी जी,
0: थैंक्स सर, बहुत शुक्रिया। तो ये छोटी सी नज़म है जो मैं आपके गुजार करना तमाम सामने।
1: जी जी,
0: जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद।
1: बहुत खूब।
0: कौन घूंघट को उठाएगा सितमगर कह के, और फिर किससे करेंगे वो हया मेरे बाद।
1: मेरे बाद। बहुत खूब, बहुत खूब,
0: बहुत शुक्रिया। फिर मोहब्बत की जमाने में ना पुरसश होगी, रोएंगी सिसकियां ले लेके वफा मेरे बाद।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
2: बहुत खूब।
0: हाथ उठते हुए उनको ना कोई देखेगा, किसके आने की करेंगे वो दुआ मेरे बाद।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: क्या दिखता है, किस कदर गम है उन्हें मुझसे बिछड़ जाने का, हो गए वो भी जमाने से जुदा मेरे बाद।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: आखिरी शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ।
1: जी इनायत।
0: वो जो कहता था कि नासर के लिए जीता हूँ, वो जो कहता था कि नासर के लिए जीता हूँ, उसका क्या जानिए क्या हाल हुआ हो मेरे बाद।
1: बहुत खूब, बहुत खूब
0: सर, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और तमाम सामईन को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप मुझे मेरी दुआओं में हमेशा रहते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।
1: इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह
2: हाफिज़। जी सामीन, अभी आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारी सी शेर व शायरी चौधरी साहब ने हमें,
1: रुखसार
2: चौधरी साहब ने हमें कॉल की थी, और बहुत ही प्यारी सी शेर व शायरी उन्होंने हमें सुनाई। माजरत करते हैं कि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी,
1: वो उन्होंने खुद माना कि उनकी तरफ से हुई, हमारी तरफ से
2: उनकी तरफ से होगी थी, हमारी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुई। तो जी सामीन, अभी आप सुन रहे हैं बेडफोर्ड एजियन रेडियो 1430 AM पर। आप हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, और अगर आपको हमें अपनी स्टूडियो पे कॉल करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर,
3: और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 07800599563।
1: जी जी, और हमारे जो भी यहाँ अगले कॉलर हैं उनसे इल्तिमास है कि आप अगर तशरीफ लाना चाहें तो आप जो ही उधर से कॉल में लाएंगे आप हम तक पहुंच जाएंगे।
2: तो क्यों नहीं हसन जी, एक अच्छी सी मैं जिंदगी के बारे में आपको एक गजल सुना दूं।
1: जी जी जरूर।
2: ये बात तो सच है कि वाकई जिंदगी एक किताब है।
1: बेशक।
2: तो जी ये एक है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है।
1: वाह वाह।
2: कहीं एक हसीन ख्वाब है, कहीं एक हसीन ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब
1: है।
2: कभी खो लिया कभी पा लिया, कभी रो लिया कभी गा लिया, कहीं रहमतों की हैं बारिशें, कहीं तिश्नगी बेहिसाब है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: कहीं छाँव है कहीं धूप है, कहीं छाँव है कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबान बेहिसाब है।
1: बहुत अच्छी।
2: ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: तो ये जिंदगी जो है एक खुली किताब है।
1: बेशक बेशक।
2: तो चलें कुछ आप हमें अब कुछ सुनाएं।
1: अब यूं करता हूँ कि गीत है, और साथ में हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो कॉलर हैं जिन्हें हमने वक्त दे रखा है कि आपने कॉल करनी है, तो उनकी जो ही कॉल मिलेगी तो हम उन्हें भी ऑन द एयर लेके चलेंगे।

0: और मेरे ख्याल में हमारे अगले सामने लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम सलाम।
0: जनाब एक बार फिर आपको खुश आमदेद। मुझे जनाब अदम का वो शेर याद आ रहा है कि शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हूँ आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं।
2: सही बात है, आप तहे दिल से। वाह
0: जी जी,
1: उसको सौगात उतनी मिलेगी।
0: हाँ हाँ,
1: फूल फूल कैसे था, फूल जिंदगी में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा।
0: वो कहते हैं ना कि इश्क इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां, इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां, जर्फ के फर्क से एहसास बदल जाता है।
1: वाह वाह वाह शाहजी, आप बस सुनाया कीजिए, आप ऐसे ही कॉल लेते हैं, खाम खा का तकल्लुफ करते हैं आप।
2: सच बात है, आपका शो वैसे ही फेमस बहुत हो जाएगा जब ये बहुत अच्छे अच्छी शेर शायरी करेंगे ना, तो इनका शो बहुत ज्यादा।
1: वो मुझे ये बात मुकम्मल नहीं होने देते
0: जी।
1: मुझे अब याद आ गया वो गीत के, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली।
0: हाँ इसी तरह से,
1: मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हम जिंदगी कर ली। तो वो शेर गजल नामुकम्मल ना रह जाए जो हम साथ साथ सुना था। पहले सुनाइए कि चोरी साहब आके चले गए।
0: जी जी जी, वो आए और चले गए। बहुत ही अच्छे शेर सुनाए और आपका बहुत बहुत, आपकी शायरी उन्होंने बेहद पसंद किया है।
1: अच्छा मैं माजरा चाहता हूँ, उस दौरान मेरी मेरे प्यारे दोस्त अहमद जहांगीर नूरपुरी साहब जर्मनी से उनसे बात हो रही थी।
0: जी जी जी,
1: तो पहले मैं कलाम वो मुकम्मल कर दूँ जो मैं आपकी नजर कर रहा था अहमद शाह साहब का, कि जो गैर थे वो इसी बात पर हमारे हुए कि हम के हमसे दोस्त बहुत बेखबर हमारे हुए।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: किसे खबर वो मोहब्बत थी या रकाबत थी, बहुत से लोग तुझे देखकर हमारे हुए।
2: क्या बात है,
0: वाह वाह।
1: और अब एक हुजूम में शिकस्ते दिला है मेरे साथ अपने, जिन्हें कोई ना मिला हम सफर हमारे हुए।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: और किसी ने गम तो किसी ने मिजाज गम बख्शा।
0: वाह वाह,
1: किसी ने गम तो किसी ने मिजाज गम बख्शा, सब अपनी अपनी जगह चारागर हमारे हुए।
0: और मोहसिन नकवी का वो शेर के, बख्शा है जिसने रूह को जख्मों का पैराहन, बख्शा है जिसने रूह को जख्मों का पैराहन, मोहसिन वो शख्स कितना तबीयत शनास था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: तड़का लगा दिया।
1: और बुझा के ताक की शमे न देख तारों को, बुझा के ताक की शमे न देख तारों को, इसी जुनू में तो बर्बाद घर हमारे हुए।
0: और नवीद सुबह की अफवाह इतनी आम हुई, नवीद सुबह की अफवाह इतनी आम हुई कि निस्व शब को घरों के दिए बुझाए गए।
1: हाय हाय हाय, और वो एतमाद कहाँ से फराज लाएंगे। सुनिएगा जरा,
0: वाह वाह,
1: वो एतमाद कहाँ से फराज लाएंगे, किसी को छोड़कर वो अब अगर हमारे।
0: क्या कहने क्या कहने। और मुझे ये शेर याद आ गया इससे, कि खूबसूरत शेर है कि एतमाद और हौसले के हवाले से है, कि देने वाले ने दिया हौसला कितना मुझको, देने वाले ने दिया हौसला कितना मुझको, राज ये तुमको बताऊं ये जरूरी तो नहीं।
2: क्या बात, बहुत खूब।
1: हाय हाय हाय हाय, वो क्या था कि रो पड़ा वो आप मुझे हौसला देते।
0: हाँ हाँ हाँ, वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए मजीद अमजद, वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए।

0: चले अब सुनिए, मौसम का जिक्र हो गया तो मौसम नकवी मेरे दिल के बड़े करीब, तो कहते हैं कि ये तवील है जरा आपकी बर्दाश्त का भी इम्तिहान होगा। अब मुझे बताइए कोई ब्रेक या कोई चीज
1: अब बस प्रोग्राम में यूं कह लीजिए कि 9 मिनट्स रहते हैं टोटल, फिर उसके बाद इजाजत लेंगे हम।
0: चले दश्ते हिजरा में न साया न सबा तेरे बाद,
1: वाह वाह अच्छी बहर है,
0: कितने तनहा है तेरे आबला पा तेरे बाद, कोई पैगाम ना दिलदाज नवा तेरे बाद, खाक उड़ती हुई खाक उड़ाती हुई गुजरी है सबा तेरे बाद, लब है एक हर्फ तलब था न रहा तेरे, लब पे एक हर्फ तलब था न रहा तेरे
1: बाद,
0: दिल में ताखीर की ख्वाहिश न दुआ तेरे बाद, और अक्सो आईना में अब रब्त हो क्या तेरे बाद, हम तो फिरते हैं खुद अपने से खफा तेरे बाद,
1: बहुत खूब बहुत खूब,
0: और धूप आरिज की ना जुल्फों की घटा तेरे बाद, इल्म की रात है कि मोहब्बत की सजा तेरे बाद,
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मुझे जनाब अनवर शोर का वो शेर बार बार ध्यान में आ रहा है कि इसी हवाले से है कि मेरे घर से जब वो हुए रुखसत, मेरे घर से जब वो हुए रुखसत, रोशनी घट गई सितारों की।
0: अरे मुझे एक शेर याद आ गया कि मेरी निगाह से खुद को जो देख लेते कभी, मेरी निगाह से खुद को जो देख लेते कभी, तुम्हारे हाथ से आईने गिर गए हो।
1: वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नजर तुम मेरा महबूबे नजर तो देखो।
0: अरे इसे गीत भी याद आ गया कि मतलब निकल गया है तो पहचान से नहीं,
1: क्या कहने
0: यूं जा रहे हैं जैसे हमें
1: जानते नहीं।
0: अच्छा इस पे शेर है वो सुनिएगा,
1: जी
0: हमने तुम्हें पसंद किया क्या बुरा किया,
1: रुतबा ही कुछ बुलंद की,
2: क्या बात है क्या बात है, आपकी तो आवाज भी बहुत प्यारी है,
0: क्या बुरा, सुनिए सुनिए बात वो जुड़ती है ना जी, रुतबा ही कुछ बुलंद किया क्या बुरा किया है, हर गली की खाक तो हम
1: इससे मुझे शेर याद आ गया कि फैलाए हुए हाथों को हिकारत से ना देखो, फैलाए हुए हाथों को हिकारत से ना देखो, हर एक के दर पे ये सवाल ही नहीं जाता,
0: नहीं जाता, वाह वाह वाह
2: बहुत खूब।
0: शाजी
1: जी जी
0: लिए फिरती है सरे कुए जहा तेरे बाद,
1: वाह वाह,
0: परचमे तारे गिरे बांक, परचम तारे गिरे बांक को हुआ तेरे बाद,
1: वाह वाह,
0: और पैरहन अपना न सलामत न कबा तेरे बाद, बस वही हम हैं वही सहरा की रिदा तेरे बाद,
1: वाह वाह,
0: और निगते निगते वाने न दस्ते कजा तेरे, निगते वाह न है न दस्ते कजा तेरे बाद, शाखे जा कोई गुंचा न खिला तेरे बाद,
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे,
0: और दिल न महताब से उजला न जिला तेरे बाद, एक जुगनू था चुपचाप बुझा तेरे बाद, और दर्द सीने में हुआ नोहा सरा तेरे बाद, दिल की धड़कन है कि मातम की सदा तेरे बाद, और कौन से रंगों के भंवर कैसी हिना तेरे बाद,
1: बहुत
0: अपना खून मेरी हथेली पे सजा तेरे बाद, तुझसे बिछड़ा तो मुरझा के हुआ बर्दे हवा, कौन देता मुझे खिलने की दुआ तेरे बाद, और एक हम है कि है बरगो नवा तेरे, एक हम है कि बेन बरगो नवा तेरे बाद, वरना आबाद है सब खल्के खुदा तेरे बाद, एक क्यामत की खराशे मेरे चेहरे पे सजी,
1: जी
0: एक क्यामत की खराशे मेरे चेहरे पे सजी, एक मैशर मेरे अंदर से उठा तेरे बाद, ऐ फलक नाज मेरी खाक निशानी तेरी, मेरी खाक निशानी तेरी, मैंने मिट्टी पे तेरा नाम लिखा
1: तेरे बाद, बहुत
0: तू के सिमटा तो रगे जा की हदों में सिमटा, तू के सिमटा तो रगे जा की हदों में सिमटा, मैं के बिखरा तो समेटा ना गया तेरे बाद, और ये अलग बात है कि अफशाना हुआ तू वरना, मैंने कितना तुझे महसूस किया तेरे बाद, और मिलने वाले मिलने वाले कई मफहूम पहन कर आए।
1: हाँ, मिलने वाले कई मफहूम पहन कर आए।
0: हाय हाय, कोई चेहरा भी ना आंखों ने पढ़ा तेरे बाद, काश को सुन ले। और बुझे जाते हैं खदो खाल मनाजरे उफ्क, फैलता जाता है ख्वाहिश का खला तेरे बाद, और मेरी दुखती हुई आंखों से गवाही लेना, मैंने सोचा तुझे अपने से सिवा तेरे बाद, और सहलिया दिल में तेरे बाद मलामत का अजाब, वरना चुभती है रगे जा में हवा तेरे बाद। मैंने सुनिए, शेर सुनिएगा, सहलिया दिल ने तेरे बाद मलामत का अजाब, वरना चुभती है रगे जा में हवा तेरे बाद। और जाने मोहसिन मेरा हासिल यही मुबहम सतरे, आए हाय हाय, जाने मोहसिन मेरा हासिल यही मुबहम सतरे, शेर कहने का हुनर भूल गया तेरे।
1: हाँ, तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद।
0: आवारगाने शौक सभी घर के हो गए, आवारगाने शौक
1: सभी घर के हो गए,
0: घर के हो गए, एक हम ही है के कूचाए दिल भर के हो गए।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: फिर यूं हुआ कि तुझसे बिछड़ना पड़ा हमें, फिर यूं लगा के शहर समंदर के हो गए।
1: क्या
0: कुछ दायरे तगैरे दुनिया के साथ साथ, ऐसे खिंचे के एक ही महवर के हो गए। और इस शहर की हवा में है ऐसा भी एक फसूं, जिस जिसको छू गई सभी पत्थर के हो गए। और सूरज लाही था कि वो साए बढ़े के शौक, कम काम नाने शहर बराबर के हो गए।
1: मिलता था वो मुझे कभी पल पल के फर्क से, फिर यूं हुआ कि फर्क ये सालों पे आ गया। मिलता था मुझसे वो कभी पल पल के फर्क से, फिर यूं हुआ कि फर्क ये सालों पे आ गया, और फिर यूं हुआ कि और अगला मिस्रा ज़हन से निकल गया है कि मिलता था मुझसे वो कभी पल पल के फर्क से, फिर यूं हुआ कि फर्क ये सालों पे आ गया।
0: जी हम जो पहले कहीं मिले होते, और ही अपने सिलसिले होते।
1: जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बड़ी देर में मिला है मुझे।
0: और फिर हर एक बात ठीक से होती, फिर ना उलझन ना फासले।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमने इजाजत लेनी है, तो इंशाल्लाह ताला अगली महफिल में आपका भरपूर इंतजार रहेगा, जरूर आइएगा।
0: हमारा आना नाना इसका वादा कोई नहीं है, लेकिन आज आपने मुझे मेरे दिल को बाग बाग कर दिया और मेरी बात पहुँच गई।
1: सलामत रहे, आपके लिए बहुत सी तालियां। अल्लाह हाफिज़।

0: और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाबे नवीद राणा साहब, स्वीडन से हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। बताइएगा इनकी शायरी आपको कैसी लगी, आप दोनों को?
1: बहुत अच्छी जान डाल दी उन्होंने हमारे रेडियो प्रोग्राम में आज आके,
0: बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इनका हम इंतजार रहेगा।
2: हमारे पास कितना टाइम रह गया, हमारे पास अच्छी सी गजल
0: दो मिनट से, अगर हमारे कोई और सुनने वाले भी आना चाहें तो उनसे भी एक आध शेर हम।
2: हमें एक मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, इमरान साहब को एक गजल सुननी है, तो चलें आपके नाम पे करते हैं ये गजल। जिंदगी यू ना मिल मुझसे खफा हो जैसे, यू ना मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मोजे सबा हो जैसे,
0: मोजे सबा हो जैसे।
2: लोग यूं देख के हंस देते हैं, लोग यूं देख के हंस देते हैं, तू मुझे भूल गया हो जैसे।
0: क्या कहने एहसान दानिश की खूबसूरती।
2: इश्क को शिर्क की हद तक ना बढ़ा,
0: इश्क
2: को शिर्क की हद तक ना बढ़ा, यू ना मिल खुदा हो जैसे,
0: मुझसे खुदा हो जैसे। क्या कहने,
2: मौत भी आई तो इस नाज के साथ, मौत भी आई तो इस नाज के साथ, मुझ पर एहसान किया हो जैसे।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: ऐसे अनजान बने बैठे हो जैसे, तुमको कुछ भी ना पता हो जैसे।
0: क्या कहने, क्या
2: जिंदगी बीत रही है दानिश, एक है जुर्म सजा हो जैसे।
0: बहुत अच्छे। और सामिन, अब इसी के साथ आज का रंग महफिल पहुंचता है अपने इख्तिताम पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सुनने वालों का जिन्होंने आज की इस बज में हमारा साथ दिया। आप सभी आते हैं रौनक तभी लगती है
2: जी, बिल्कुल।
0: आप सभी का भी शुक्रिया,
2: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने हमारी प्रोग्राम में हमारा साथ दिया और इस प्रोग्राम में शामिल
0: हुए। आज तो तरन ने भी शायरी सुनाई है,
2: तरन ने भी शायरी सुना दी। और तरन, आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगता है?
1: बहुत अच्छा, बहुत।
2: चलें
0: जी जी। और सामीन, अब इसी के साथ ही आप सुनने वालों से अगले बज्म तक, अगली महफिल तक इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाए,
2: खुदा लाए तो।
0: इजाजत दीजिए,
2: इजाजत दीजिए। अल्लाह
3: हाफिज़।
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
4: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
4: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
4: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
4: 01274317644।
5: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3 4 9। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
3: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तकलीफ

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
12: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
12: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
12: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
12: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
5: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Rexford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे,
10: बालियां अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
9: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
14: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
13: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर। रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: यू आर लिसनिंग टू
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is.
2: And the winner is.
3: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से
0: लुत्फ उठाएं। ब्रेकफास्ट एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
10: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
11: बालियां, अंगूठियां और हार,
10: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
10: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
10: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442।
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
12: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
11: सोफी ज्वेलर्स?
12: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
11: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
13: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
14: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
13: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
14: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर।
13: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
14: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड
13: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
14: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
13: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 1413 AM. You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07-885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
9: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

रोत पढ़ती हुई बाखबर गई खुशबू, नजर जो आया मदीना उतर गई खुशबू। ख्याल था कि न जाने कहां से आए हुजूर, राहे हबीबे खुदा में बिखर गई खुशबू।

बात करूंगा अदब से हुदूद के अंदर के खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर नबी का नाम आते ही अंगूठे चूम लेता हूं के इश्क़े रसूल।